हर किरण अपने साथ एक नया संदेश लेकर आती है। अंधेरा चाहे कितना भी गहरा हो, उजाले की एक किरण उसे बदलने का सामर्थ्य रखती है। इसी तरह जीवन में छोटी सी कोशिश भी बड़े बदलाव की शुरुआत बन सकती है।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर. प्रोग्राम है भोर सुहानी. प्रकृति की हर धड़कन में उस परम शक्ति का एहसास है. उगता सूरज, चहचहाते पंछी, बहती हवा और खिलते फूल. जब मन में विश्वास हो तो मुश्किलें रास्तों पर भी भीतर से एक आवाज आती है, चलते रहो, कोई शक्ति तुम्हारे साथ हमेशा है, हाथ थामे हुए है.

0: अजीब है ना, जिंदगी में एक वक्त ऐसा भी आता है जब पीछे छूट जाने का डर इतना बड़ा हो जाता है कि हमें ये दिखाई भी नहीं देता कि हम खुद कितनी दूर आ चुके हैं। कल तक जिसे पाने के लिए पूरी जान झोंक दी थी, आज वो उपलब्धि छोटी लगने लगती है। शायद तरक्की की यही पहचान है। आज भारतीय बैडमिंटन ठीक उसी मुकाम पर खड़ा है। 2009 में जब भारत में आयोजन हुआ था प्रतिष्ठित BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप का, तो 19 वर्षीय साइना नेहवाल पदक के लिए भारत की एकमात्र उम्मीद थी, वो भी दावेदारों की पहली कतार में नहीं थी। प्रकाश पादुकोण और पुलेला गोपीचंद की कहानियां बीते कल के किस्से लगते थे, लेकिन आज 2026 में जब ये कारवां लौट कर भारत आया है तो उम्मीदवारों की एक लंबी श्रृंखला है। इसीलिए तो इस टूर्नामेंट के पहले दिन सोमवार होने के बावजूद अच्छी खासी प्रेमी नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम पहुंचे। और फिर कोर्ट पर जो नजारा देखने को मिला वो दर्शकों के लिए किसी सौगात से कम नहीं था। भारत के 21 वर्षीय आयुष शेट्टी ने किया एक ऐसा उलटफेर जिसे देख पूरा विश्व चौंक गया और भारतीय प्रशंसक खुशी से झूम उठे। 21 वर्षीय आयुष ने एक कश्मकश भरे मुकाबले में रेनिंग वर्ल्ड चैंपियन चीन के शी यू की को मात दी। आयुष का मैच पॉइंट स्कोर करते ही इंदिरा गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में मानो जोश का एक विस्फोट हुआ। कहते हैं पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं। फरवरी 2025 में 19 वर्ष की आयु में पहली बार आयुष शेट्टी का सामना शियुकी से हुआ था इंडोनेशिया ओपन में, और उस टूर्नामेंट में भी आयुष ने शियुकी को एक कड़ी चुनौती दी थी लेकिन उनको हरा नहीं सके थे। लेकिन इस बार अपनी गलतियों से सीख पूरी तैयारी के साथ आए थे। कहा
1: प्लेइंग वर्ल्ड वन इज नेवर इजी, इट्स अ फर्स्ट राउंड फॉर मी एज वेल। आई वुड से इवन आई हैव नॉट सेटल्ड इन एट ऑल, बट आई थिंक इट वाज अ टफ वन फॉर बोथ ऑफ अस। टैक्टिकली आई वाज मच बेटर टुडे। द लास्ट टाइम वी प्लेड आई थिंक ही आउटप्लेड मी ऑन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द गेम, बट आई थिंक टुडे आई वाज सुपर प्रिपेयर्ड।
0: मैच के दौरान

0: पीयूष को चोट भी लगी, उंगली से खून भी बहने लगा। जब कोर्ट साइड डॉक्टर को चिंतित हुए, लेकिन आयुष ने मैच के बाद इस बात का आश्वासन दिया कि उनकी चोट गंभीर नहीं थी।
1: I think I was bleeding on my finger, so I had to go medical. I think nothing serious.
0: आयुष के हर शॉट, हर पॉइंट जीतने पर गड़गड़ाती हुई तालियों से जब स्टेडियम गूंजता तो उससे उन्हें एक अलग तरह की ऊर्जा मिलती।
1: The crowd was really, you know, behind me and it was giving me the energy. I was so bit tired, but I think the crowd cheering like that, I think gave me a lot of energy.
0: ऐसा ही कुछ पुरुषों के डबल्स वर्ग में अपने जोड़ीदार हरिहरन अमसा करुणन के साथ पहला मुकाबला जीतने पर एम अर्जुन ने भी कहा,
2: बहुत अच्छा था। कोर्ट के अंदर जाने से पहले वी डिडंट नो, एक्सपेक्ट नहीं किया था इतना क्राउड आएगा। हम लोग का नाम अनाउंस करने के बाद क्राउड चिल्लाना शुरू किया, देन बूस्टेड अस, आई मीन हम लोग को, स्पेशली व्हेन द क्राउड पीछे है तो हम लोग को बहुत एनर्जी और वो बूस्ट अप मिलता है हर एक पॉइंट के बाद। अगर पॉइंट गया तो भी दैट चीयर एक्चुअली हेल्प्स अस, एंड देन वो फर्स्ट विन मिलने के बाद आई मीन बोथ ऑफ अस बहुत खुश हो। होपफुली दे कीप कमिंग इन फॉर द नेक्स्ट राउंड्स एज़ वेल।
0: अर्जुन और अमसा करुणन के सामने आयरलैंड से आने वाली स्कॉट गिल्डिया और पॉल रेनॉल्ड्स की जोड़ी थी जो मैच के दौरान चोट के चलते रिटायर हो गई। हालांकि उससे पहले भी मैच में भारतीय जोड़ी का दबदबा कायम था, इसके चलते अमसा करुणन और अर्जुन राउंड ऑफ 32 में प्रवेश कर चुके हैं। दूसरी तरफ इस वर्ग में गोल्डन बॉयज की जोड़ी चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रांकी रेड्डी को बाय मिला है, वो भी राउंड ऑफ 32 में शिरकत करते हुए नजर आएंगे। अब बात करते हैं महिलाओं की। जाहिर सी बात है सबसे बड़ी स्पॉटलाइट पीवी सिंधु पर होने वाली थी। राउंड ऑफ 64 में उन सोफिया नोबल की चुनौती कोई खास कड़ी नहीं मानी जा रही थी और कोर्ट पर भी वही देखने को मिला। सिंधु ने दो सीधे सेटों में आयरिश प्रतिद्वंदी को मात देकर अगले राउंड में अपनी जगह बनाई, लेकिन मैच के बाद उन्होंने बताया कि क्योंकि वो इस ओपोनेंट के खिलाफ पहली बार खेल रही थी, उन्हें सतर्क रहना था और साथ के साथ कोर्ट की कंडीशंस को समझने के लिए ये मुकाबला बेहद जरूरी था।
3: Of course, I'm playing with her for the first time and I think more than anything it was important for me to just focus on what I do and what I play and how I play. I mean, I was excited to get onto the court happening here in India. So it was really good to, you know, get onto the court and I could see a lot of people cheering and supporting me. I think that gave me a lot of confidence. I mean, irrespective of whoever the opponent is, it was just that I had to just play my game and give my best. It was important for me to get used to the court conditions and see how it is and how the shuttle is. So I was actually figuring out how it is and what it is. It's not like the best element. Obviously, we will play the best badminton, but actually get onto the court, you need to understand the court conditions. So today, I think that was the first thing for me that came into my mind. But I think I've managed it well and the court conditions are pretty good.
0: Sindhu, BWF World Championships 2026 mein भारत के लिए पदक की एक प्रबल दावेदार मानी जा रही हैं, लेकिन सिंधु का कहना है कि वो अभी उतनी दूर तक की नहीं सोच रही हैं और उनका फोकस अगले मैच पर है।
3: मेडल तो काफी दूर है अभी मेरे लिए, बस एक मैच मैं बस हर एक मैच में अच्छा खेलना है, 100% देना है और अभी फर्स्ट मैच हुआ है, यू नो आई नीड टू फोकस ऑन द नेक्स्ट मैच एंड इट्स जस्ट वन मैच एट अ टाइम फॉर मी, सो आई जस्ट हैव टू गिव माय बेस्ट।
0: जहां एक तरफ पहले भी वर्ल्ड चैंपियनशिप्स में मेडल जीत चुकी दिग्गज सिंधु है तो दूसरी तरफ कुछ युवा खिलाड़ी भी भारत का प्रतिनिधित्व इस टूर्नामेंट में कर रहे हैं। युगल वर्ग में काविप्रिया सेल्वम और सिमरन सिंघी की जोड़ी अपना पहला वर्ल्ड चैंपियनशिप खेल रही हैं। उन्होंने भी शानदार शुरुआत करते हुए स्पैनिश जोड़ी को दो सीधे सेटों में मात दी। मैच के बाद सिमरन से हमने जानने की कोशिश की कि कोर्ट की कंडीशंस किस प्रकार है।
4: फर्स्ट टाइम है, सब क्राउड हमारा एंड स्टार्ट में थोड़ा डिफेंसिव स्टार्ट किया, कोर्ट कंडीशंस थोड़ा एडजस्ट नहीं हो रहा था बिकॉज एक साइड से इट्स वेरी स्लो और बाकी फास्ट है, तो एडजस्ट होने में टाइम लग गया एंड वी वर प्लेइंग वेरी डिफेंसिव। देन आफ्टर 10-12 पॉइंट्स वी चेंज द गेम, हमने डिसाइड किया हम ऑल आउट अटैक करेंगे एंड यू नो वी आर गोना कीप इट डाउन, एक जन आगे जाके कीप करेगा और अटैक करेगा। तो हमने एंड में गेम चेंज किया, वी वर डाउन बट बहुत लेट चेंज हुआ, सो बट देन लेटर वी कैच इट ऑन एंड वी विन द मैच।
0: युगल वर्ग में ही चोट के बाद वापसी कर रही ट्रीसा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी ने कमाल का प्रदर्शन किया। ट्रीसा की चोट के चलते कुछ अहम टूर्नामेंट्स में ये जोड़ी शिरकत नहीं कर पाई थी, जिससे काफी मायूस और हताश थी।
5: I think those situations, I was mentally preparing for that. I just need to recover and just come back and play. And obviously, these kind of prestigious tournaments after the injury I am playing.

0: which makes me more feeling more happy and so excited.
1: लेकिन वर्ल्ड चैंपियनशिप में पुरजोर वापसी की है. गायत्री के पिता और कोच पुलेला गोपी चंद कोर्ट साइड पर मौजूद थे और उनकी उपस्थिति में स्पेनिश जोड़ी को 21-9 और 21-13 से इन दोनों ने मात दी. हाँ, भारतीय प्रशंसक लगातार तालियों की गड़गड़ाहट से इनकी हौसला अफजाई करते रहे, जिससे उन्हें मोटिवेशन मिला और उनका बेस्ट परफॉर्मेंस देखने को मिला.
2: इट्स अमेजिंग. आई मीन इट्स अमेजिंग टू प्ले इन इंडिया. यू नो द होल स्टेडियम सपोर्टिंग फॉर यू, चीयरिंग फॉर यू, इट फील्स ग्रेट. बहुत अच्छा लगा सर, पहला मैच खेल के इंडिया में, वो भी तो बहुत स्पेशल फील हो रहा है. और हाँ, बहुत अच्छा था फर्स्ट गेम, नेक्स्ट राउंड के लिए वेट कर रहे हैं.
1: चोट से उभरने की कहानी मौजूदा ओलंपिक चैंपियन और वर्ल्ड रैंक नंबर 1 आनसे युंग की भी है. दक्षिण कोरिया से आने वाली इस खिलाड़ी ने बैडमिंटन के हर एक खिताब को अपने नाम किया है. सोमवार को राउंड ऑफ 64 के मुकाबले में आसान सी जीत भी दर्ज की, लेकिन युंग का कहना है अभी वो पूरी तरह से फिट नहीं है. उसके बावजूद ये वर्ल्ड चैंपियनशिप में अपने देश का परचम लहराने का उनका जज्बा है जो उनको यहाँ लेकर आया है. और मंगलवार को भारत का तिरंगा ऊंचा लहराने के उद्देश्य से BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप्स 2026 में अपने सफर की शुरुआत करेंगे लक्ष्य सेन और उन्नति हुडा. साथ के साथ भारतीय फैंस की नजर मिक्स डबल्स पर भी होगी, जहां ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टो की जोड़ी को तो बाय मिला है, लेकिन आसित सूर्या और अमृता प्रथमेश और रोहन कपूर और ऋत्विका गाड़े की जोड़ियां राउंड ऑफ 64 में अपना पहला मुकाबला खेलेगी. प्रोड्यूसर शाहनवाज खान और एडिटर वंदना के साथ दर्पण टीकिया और मोहम्मद शाहिद आजमी की खास रिपोर्ट.

0: ಸಮಯ 8 ಗಂಟೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಭಾವಸ್ಪಂದನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಗಿಸುವಂಥ ಸಮಯ ಕೂಡ ಹತ್ರ ಬಂದಾಯಿತು. ಸಂದೇಶ ಕಳಿಸಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರೀತಿಯ ಧನ್ಯವಾದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಹಿಂದಿ ಹಾಗೂ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ವಾರ್ತಾ ಸಂಚಿಕೆ ಪ್ರಸಾರವಾಗುತ್ತೆ ದೆಹಲಿ ಕೇಂದ್ರದ ಸಹ ಪ್ರಸಾರದಲ್ಲಿ. ಟ್ಯೂನ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು 101.3 FM ರೈನ್ಬೋ ಕನ್ನಡ ಕಾಮನಬಿಲ್ಲು. ಮ್ಯಾಜಿಕಲಿ ಯುವರ್ಸ್, ಮ್ಯೂಸಿಕಲಿ ಯುವರ್ಸ್. ಇಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಯಾಗಿದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಜೆ ಸ್ವಾತಿ. ಮತ್ತೆ 8:30 ಹಲೋ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಜೊತೆಯಾಗ್ತೀನಿ, ಕೇಳ್ತಾ ಇರಿ.
1: ದೆಹಲಿ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ
2: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुड़कुड़दास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
3: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
2: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।
4: हर घर सूर्य घर।
5: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। झारखंड में जारी विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के बाद राज्य सरकार ने JSSC, CGL परीक्षा और निजी एजेंसी TDPL द्वारा संचालित सभी अन्य भर्ती परीक्षाएं रद्द की। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की मतदाता पहचान प्रणाली की प्रशंसा की, इसे अमेरिका के चुनाव विनियमों को और सख्त बनाने के लिए आदर्श बताया। भारत आज नई दिल्ली में 12वीं ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। भारत के सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ को काठमांडू में राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने नेपाल आर्मी के मानद जनरल का रैंक प्रदान किया। मौसम विभाग ने आज झारखंड में अत्यधिक तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है और आयुष शेट्टी ने नई दिल्ली में बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप के पुरुष सिंगल्स के पहले दौर में विश्व के नंबर एक और मौजूदा चैंपियन शी यू क्यूई को हराया। और अब समाचार विस्तार से। झारखंड में JPSC और JSSC उम्मीदवारों के 24 दिन से जारी विरोध प्रदर्शन के बाद राज्य सरकार ने JSSC, CGL परीक्षा 2024 और TDPL एजेंसी द्वारा संचालित सभी प्रतियोगी परीक्षाएं रद्द कर दी हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल शाम मंत्रिमंडल की विशेष बैठक के बाद ये घोषणा की।
6: पूरे तरीके से इसका ऑपरेशन होनी चाहिए। जो हमें जानकारी CGL को लेकर हम लोग के समक्ष बताया गया और उस तथ्यों को समझ बूझने के बाद कैबिनेट ने जैसे CGL को भी रद्द करने का निर्णय लिया।
5: और ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
7: सरकार ने वर्ष 2014 से अब तक की भर्ती प्रक्रियाओं की जांच कराने के साथ परीक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए IAS अधिकारी अमिताभ कौशल की अध्यक्षता में समिति गठित करने का भी निर्णय लिया है। इस बीच मंत्री दीपिका पांडे सिंह और स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के साथ विधायक जयराम कुमार ने सदर अस्पताल पहुंचकर देवेंद्र नाथ महतो और अन्य आंदोलनरत छात्रों को जूस पिलाकर उनका अनशन समाप्त कराया। देवेंद्र नाथ महतो ने सरकार के फैसले का स्वागत किया और JPSC JSSC न्याय मंच ने फिलहाल आंदोलन स्थगित करने की घोषणा की। वहीं छात्र नेता रविंद्र पासवान ने

0: सरकार के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच का आदेश होने तक रिफॉर्म मंच का आंदोलन जारी रहेगा। सरकार के फैसले के बाद जेएससीसी सीजीएल के जरिए पहले से नियुक्त अभ्यर्थियों ने भी विरोध जताया और रांची के प्रोजेक्ट भवन के बाहर जुटकर अपनी नौकरी और भविष्य को लेकर चिंता जाहिर की। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
1: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की मतदाता पहचान प्रणाली की प्रशंसा की है और इसे अमेरिका के चुनाव विनियमों के लिए मॉडल बताया है। उन्होंने भारत की निर्वाचन प्रणाली को चुनावी सुरक्षा का उदाहरण बताया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री ट्रंप ने भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के साथ हाल की बातचीत का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि ज्ञानेश कुमार ने ये सवाल उठाया था कि बिना अनिवार्य वैध फोटो पहचान पत्र के अमेरिका में चुनाव कैसे कराए जा सकते हैं। श्री ट्रंप ने इस टिप्पणी का हवाला देते हुए अमरीकी कांग्रेस से सेव गार्ड अमेरिकन वोटर एलिजिबिलिटी यानी सेव अमेरिका अधिनियम पारित करने को कहा। ये प्रस्तावित विधेयक संघीय चुनाव में मतदान के लिए और अधिक सख्त नियम लागू करने की मांग करता है। भारत आज नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक की मेजबानी करेगा। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने बताया है कि यह बैठक महत्वपूर्ण विचार विमर्श, सर्वसम्मति तक पहुंचने और पर्यावरणीय सहयोग को और मजबूत करने का मंच उपलब्ध कराएगी। एक रिपोर्ट।
2: ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव करेंगे। यह कार्यक्रम भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 की मुख्य थीम सुदृढ़शीलता, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के अंतर्गत आयोजित किया जाएगा। यह बैठक सदस्य देशों के मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों, नीति निर्माताओं और विशेषज्ञों के लिए सार्थक चर्चा करने, आम सहमति बनाने और पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने का मंच प्रदान करेगी। अध्यक्षता के हिस्से के रूप में भारत ने ब्रिक्स पर्यावरण कार्य समूह के तहत केंद्रित गतिविधियों के लिए 4 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान की है। इनमें सतत जीवन शैली को बढ़ावा देना, वनीकरण, जंगल की आग का प्रबंधन और आपदा के प्रति दृढ़ताशील, सर्कुलर इकोनॉमी और अनुकूलन शामिल है। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
1: भारत के सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ को नेपाल आर्मी के मानद जनरल का रैंक दिया गया है। कल काठमांडू के शीतल निवास में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने उन्हें यह सम्मान प्रदान किया। नेपाल के उपराष्ट्रपति राम सहाय प्रसाद यादव, विदेश मंत्री शिशिर खनाल, नेपाल में भारत के राजदूत नवीन श्रीवास्तव तथा नेपाल सेना और सरकार के वरिष्ठ अधिकारी इस अवसर पर मौजूद थे। जनरल धीरज सेठ नेपाल के सेना प्रमुख जनरल अशोक राज सिग्देल के निमंत्रण पर रविवार को नेपाल पहुंचे थे। मानद पद प्रदान करने की ये परंपरा वर्ष 1950 में शुरू हुई थी। इसके तहत भारत और नेपाल एक दूसरे के सेना प्रमुखों को जनरल का मानद रैंक प्रदान करते हैं। जनरल धीरज सेठ ने जनरल सिग्देल के साथ द्विपक्षीय सैन्य संबंध बढ़ाने पर विचार विमर्श किया। उन्होंने भारतीय दूतावास में राजदूत नवीन श्रीवास्तव से भी भेंट की और दोनों देशों के संबंध और मजबूत करने पर चर्चा की। उन्होंने नेपाल सेना को भारत की ओर से सैन्य और चिकित्सा उपकरण भी दिए। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। मौसम विभाग ने आज झारखंड में अत्यधिक तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया है। बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी तेज बारिश का अनुमान है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, पूर्वोत्तर राज्य, कराईकल, पुदुचेरी, तमिलनाडु, केरलम और माहे में भी गुरुवार तक तेज बारिश होगी। हिमाचल प्रदेश में मॉनसून की तेज वर्षा जारी है। राज्य में कल अधिकांश स्थानों पर बहुत तेज बारिश हुई। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बारिश के कारण कई स्थानों पर जनजीवन अस्त व्यस्त है।
3: बीते 24 घंटों के दौरान मंडी जिले के कटौला में सर्वाधिक 74 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। लगातार बारिश के चलते सामान्य जनजीवन भी प्रभावित हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार इस मॉनसून सीजन के दौरान प्रदेश में अब तक बारिश से जुड़ी घटनाओं में 80 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, जबकि लगभग 900

0: करोड़ रुपए की सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान हो चुका है। इस बीच मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आज राज्य के 4 जिलों बिलासपुर, कांगड़ा, मंडी और सिरमौर में भारी से बहुत भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि 6 अन्य जिलों ऊना, हमीरपुर, चंबा, कुल्लू, शिमला और सोलन के लिए भारी वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
1: आंध्र प्रदेश के डॉक्टर बीआर अंबेडकर कोनासीमा जिले से मछुआरों को ले जा रही मछली पकड़ने की एक नौका समुद्र में लापता हो गई है। ये मछुआरे इस महीने की 3 तारीख को मछली पकड़ने के लिए निकले थे और उन्हें 10 दिन के भीतर वापस लौटना था। उनके वापस न लौटने पर परिवार वालों ने अधिकारियों को सूचना दी। तटीय पुलिस और मत्स्य विभाग के अधिकारियों ने लापता मछुआरों की तलाश के लिए अभियान शुरू कर दिया है। केरलम में विझिंझम समुद्री बंदरगाह से आज से सीधा निर्यात और आयात शुरू हो रहा है। मुख्यमंत्री वीडी सतीशन आज इस सेवा का उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय बंदरगाह जहाजरानी और जल मार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल मुख्य अतिथि होंगे। एक रिपोर्ट।
2: विझिंझम समुद्री बंदरगाह अब तक मुख्य रूप से एक अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसशिपमेंट केंद्र के तौर पर काम कर रहा था, जहां मदरशिप कहे जाने वाले बड़े जहाजों से आने वाले कंटेनर को आगे ले जाने के लिए छोटे जहाजों में स्थानांतरित किया जाता था। इस बंदरगाह को 17 जुलाई को निर्यात और आयात के लिए मंजूरी मिली थी। शुरुआत में विझिंझम बंदरगाह से सिर्फ फुल कंटेनर लोड कार्गो का आयात निर्यात होगा। इस बंदरगाह का पिछले वर्ष 2 मई को उद्घाटन किया गया था। तिरुवनंतपुरम से स्मिति एम पलुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि व्यक्ति को हमेशा आत्मसम्मान, साहस और स्वाभिमान के साथ जीना चाहिए। एक सोशल मीडिया पोस्ट में संस्कृत सुभाषितम साझा करते हुए उन्होंने कहा कि सच्चा पुरुषार्थ इसी में है कि व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में अपने सिद्धांतों और मूल्यों से समझौता न करे। गोल में श्रीलंका के साथ पहले क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत ने पहली पारी के आधार पर 178 रन की बढ़त हासिल कर ली है। भारतीय गेंदबाजों ने मेजबान टीम को 284 रन पर समेट दिया। भारत ने अपनी पहली पारी में 462 रन बनाए थे और आज चौथे दिन का मैच भारतीय समयानुसार सवेरे 10 बजे से शुरू होगा। और अब खबरें नई दिल्ली में आयोजित BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप की।
3: नई दिल्ली में बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप के पहले राउंड में भारतीय खिलाड़ियों ने जीत के साथ शुरुआत की। खिलाड़ी आयुष शेट्टी ने पुरुषों के एकल श्रेणी में मौजूदा चैंपियन और दुनिया के नंबर वन खिलाड़ी चीन के शी युकी को 21-14, 13-21 और 21-19 से शिकस्त दी। वहीं महिलाओं की एकल श्रेणी में भारत की स्टार खिलाड़ी पीवी सिंधु ने आयरलैंड की सोफिया नोबल को 21-7 और 21-11 से आसानी से हरा दिया। साथ ही महिलाओं की युगल श्रेणी में भारत की जोड़ी ट्रेसा जोली और गायत्री गोपीचंदन ने स्पेन की पौला लोपेज और लूसिया रोड्रिगेज को 21-9 और 21-13 से हरा दिया। इससे पहले पुरुषों की युगल श्रेणी में भारत की जोड़ी एमआर अर्जुन और हरिहरन अमसा करुणन ने दूसरे राउंड में जगह बनाई। दूसरे गेम में ये जोड़ी 6-4 से आगे चल रही थी, तभी आयरलैंड के उनके प्रतिद्वंदी स्कॉट गिल्टिया और पॉल रेनॉल्ड्स को चोट के कारण खेल से बाहर होना पड़ा। अर्जुन और अमसा करुण ने पहला गेम 21-16 से जीत लिया था। विष्णु और भानु की रिपोर्ट के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: FIH महिला हॉकी विश्व कप में आज भारतीय टीम पूल डी के अपने दूसरे मैच में दक्षिण अफ्रीका से खेलेगी। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
4: धन्यवाद मुनीश। देश के राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों की सुर्खियों में भारतीय जनता पार्टी की नई राष्ट्रीय टीम की घोषणा और झारखंड में छात्र आंदोलन के असर के समाचार छाए हुए हैं। पंजाब केसरी के मुख पृष्ठ पर पहला समाचार है, अब नितिन की नवीन टीम। पत्र ने उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे सिंधिया, राम माधव, महासचिव स्मृति ईरानी और कोषाध्यक्ष पीयूष गोयल के चित्र भी सबसे ऊपर प्रकाशित किए हैं। दैनिक भास्कर ने इसी खबर को शीर्षक दिया है, भाजपा की नवीन टीम, 12 महिलाएं, 7 अल्पसंख्यक और 6 नए महासचिव। जनसत्ता में इस समाचार की सुर्खी है, माधव और ईरानी की वापसी, अमित मालवीय की हुई छुट्टी। हिंदुस्तान का शीर्ष समाचार है, टीम नवीन में जोश होश का मेल। नवभारत टाइम्स ने झारखंड के घटनाक्रम को पहला समाचार बनाया है। कई फजीहतों के बाद एनटीए ने बदली अपनी टीम, 600 एक्सपर्ट्स हटाए। पत्र ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री के निर्देश और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के वक्तव्य को बॉक्स प्रकाशित करते हुए आंदोलनरत छात्रों की तस्वीर भी प्रमुखता से प्रकाशित की है। दैनिक ट्रिब्यून ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के चित्र सहित इस खबर को शीर्षक दिया है। झारखंड आउटसोर्स एजेंसी की 2014 से अब तक कराई गई सभी परीक्षाएं

0: राजस्थान पत्रिका ने रेल यात्रियों की सुविधाओं की उपेक्षा और अनदेखी को संपादकीय का विशेष बनाया है। पत्र कहता है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ताजा रिपोर्ट चौंकाने वाली है, जिसमें कहा गया है कि देश के कई बड़े रेलवे स्टेशनों के वाटर कूलर के पानी में ई कोलाई बैक्टीरिया मिले हैं। सवाल सिर्फ पानी के पीने का साफ होने का नहीं है, यात्रियों की दूसरी सुविधाओं की भी समयबद्ध जांच और सतत निगरानी करनी चाहिए, चूंकि यात्री सुविधाओं कोई भी अनदेखी चिंताजनक है। लोकसत्ता ने नाग पंचमी के अवसर पर महाकाल मंदिर उज्जैन में उमड़ी लाखों भक्तों की भीड़ का समाचार अपने पहले पृष्ठ पर रखते हुए बिहार के लखीसराय में मची भगदड़ में 7 दर्शनार्थियों की मौत का समाचार भी बॉक्स में प्रकाशित किया है।
1: और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। झारखंड में विद्यार्थियों के जारी विरोध प्रदर्शन के बाद राज्य सरकार ने जेएसएससी सीजीएल परीक्षा और निजी एजेंसी टीडीपीएल द्वारा संचालित सभी अन्य भर्ती परीक्षाएं रद्द की। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की मतदाता पहचान प्रणाली की प्रशंसा की, इसे अमेरिका के चुनाव विनियमों को और सख्त बनाने के लिए आदर्श बताया। भारत आज नई दिल्ली में 12वीं ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। भारत के सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ को काठमांडू में राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने नेपाल आर्मी के मानद जनरल का रैंक प्रदान किया। मौसम विभाग ने आज झारखंड में अत्यधिक तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया है और आयुष शेट्टी ने नई दिल्ली में बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप के पुरुष सिंगल्स के पहले दौर में विश्व के नंबर एक और मौजूदा चैंपियन शी यू क्यू को हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस। झारखंड गवर्नमेंट कैंसल्स जेएसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन आफ्टर 24-डे स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट। ऑल्सो कैंसल्स ऑल अदर रिक्रूटमेंट एग्जाम्स कंडक्टेड बाय द प्राइवेट एजेंसी टीडीपीएल। U.S. President Donald Trump praises India's voter ID system, hails it as a model for stricter U.S. election rules. India to host 12th BRICS Environment Ministers meeting in New Delhi today. Indian Army Chief General Dhiraj Seth conferred rank of Honorary General of Nepal Army by President Ramchandra Podel in Kathmandu. IMD issues red alert for a very heavy rainfall in Jharkhand today. And Ayush Shetty stuns world number one and defending champion Shi Yu Qi in first round of men's singles at BWF Badminton World Championships in New Delhi. And now the news in detail. Jharkhand government has cancelled JSSC CGL examination after 24 days students protest in the state. It has also cancelled all other recruitment exams conducted by the private agency TDPL. The announcement triggered celebrations at the protest site in Ranchi, though the demand for a CBI probe remains unresolved. We have a report.
3: The Jharkhand government has decided to cancel the JSSC CGL examination and all competitive examinations conducted by the TDPL agency, besides announcing a probe into recruitment examinations conducted by JPSC and JSSC since 2014. The decision was taken at a special cabinet meeting chaired by Chief Minister Hemant Soren and was welcomed by protesting students at the Jaipal Singh Munda Stadium, who celebrated by distributing sweets and applying gulal. The government has also decided to investigate recruitment processes conducted by JPSC and JSSC from 2014 onwards and constitute a committee headed by IAS Officer Amitabh Kaushal to recommend reforms in the examination system. Meanwhile, Minister Deepika Pandey Singh and Health Minister Irfan Ansari, along with MLA Jairam Kumar, visited Sadar Hospital and ended the hunger strike of Devendranath Mehto and other protesting students by offering them juice. Devendranath Mehto thanked the government and said the decision addressed major demands with the JPSC-JSSC Nyaya Munch announcing that it was suspending its agitation for now. Student leader Ravindra Paswan thanked the government for the decision but said the reform munch would continue its agitation until a CBI probe is ordered into the alleged irregularities. The government's decision has also triggered protests among candidates already appointed through the JSSC CGL examination, with several selected candidates gathering outside Project Bhavan in Ranchi and expressing concerns over their jobs in future. The reform munch is expected to announce its detailed position and future

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। पर्यावरण सहयोग पर आम सहमति बनाने के उद्देश्य से 12वें ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में संपन्न। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश, पंजाब और गुजरात के लिए नए प्रदेश प्रभारी और सह प्रभारियों की नियुक्ति की। प्रवर्तन निदेशालय ने कर्नाटक लोक सेवा आयोग में पेपर लीक घोटाले में कई ठिकानों पर छापेमारी की। झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा और उत्तर प्रदेश में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025 की घोषणा। त्रिशा जॉली और पुलेला गायत्री गोपीचंद सहित 15 अन्य खिलाड़ी अर्जुन पुरस्कार के लिए नामित। और नई दिल्ली में BWF विश्व चैंपियनशिप में उन्नति हुड्डा म्यांमा की थेत हतार थुजार को हराकर महिला सिंगल्स के दूसरे दौर में। अब समाचार विस्तार से। नई दिल्ली के भारत मंडपम में 12वां ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों का सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में सदस्य देशों के मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों, नीति निर्माताओं और विशेषज्ञों ने सार्थक चर्चा, आम सहमति बनाने और पर्यावरण सहयोग को मजबूत करने पर विचार विमर्श किया। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने सम्मेलन की अध्यक्षता की। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। बैठक को संबोधित करते हुए श्री यादव ने मानवता को प्राथमिकता देते हुए सतत पर्यावरण के निर्माण की दिशा में नीति, प्रौद्योगिकी और जनभागीदारी को समन्वित करने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारत ने 2005 और 2022 के बीच प्रदूषण उत्सर्जन की तीव्रता में 37% से अधिक की कमी की है। उन्होंने कहा कि अध्यक्ष के रूप में भारत एक स्वतंत्र, रचनात्मक और सर्वसम्मति आधारित संवाद को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है और सभी सदस्य देशों के दृष्टिकोण तथा योगदान को बेहद महत्व देता है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने उत्तर प्रदेश, पंजाब और गुजरात के लिए नए प्रदेश प्रभारी नियुक्त किए हैं। विनोद तावड़े को उत्तर प्रदेश का प्रभारी और जगदीश ईश्वर भाई पटेल को सह प्रभारी बनाया गया है। डॉक्टर सतीश पुनिया को पंजाब का प्रभारी और तरुण चुग को गुजरात का प्रभारी नियुक्त किया गया है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्षी दलों पर विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक को लेकर वोट बैंक की राजनीति के लिए गलत सूचना फैलाने का आरोप लगाया। एक निजी समाचार एजेंसी को दिए साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि विपक्ष ने बहुत झूठ फैलाया है और इस तरह की झूठी बातें फैलाकर राजनीति करना सरासर गलत है।
1: पूरा झूठ फैलाया देश भर में है कि FCRA जो है क्रिश्चियन मिशनरी को टारगेट किया जा रहा है, जबकि क्रिश्चियन मिशनरी का टोटल इंडिया का जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन आते हैं वो 16% है, बाकी तो सब हिंदू का है। तो प्रोटेस्ट ज्यादा करना है तो हिंदू लोग करना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा तो हिंदू का है। देखिए, इस तरह का झूठे बातें फैला करके राजनीति करना बिल्कुल ठीक नहीं है।
0: श्री रिजिजू ने कहा कि ये विधेयक विदेशी धन प्रवाह में पारदर्शिता लाएगा और अब सच्चाई सामने आएगी। उन्होंने कहा कि विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजना एक उत्कृष्ट निर्णय है। भारतीय जनता पार्टी ने आज नई दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी मुख्यालय में स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान राष्ट्रगीत वंदे मातरम का अपमान करने के लिए कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए भाजपा प्रवक्ता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि जब कांग्रेस पार्टी राष्ट्रगीत का सम्मान नहीं कर सकती तो उसे स्वतंत्रता आंदोलन के संरक्षक होने का दावा करना बंद कर देना चाहिए।
2: 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने घोषणा की, जन गण मन राष्ट्रीय गान, वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत। ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तो कांग्रेस के ही थे ना, तो ये जो नया बदलाव किया गया, कभी ये उम्मीद नहीं थी कि प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू द नेशनल ऑनर्स एक्ट जो बना 1971 में, किसने बनाया? कांग्रेस की सरकार, इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर। उसमें क्या कहा गया? तिरंगा हो, जनगणमन हो, इसका कोई इंसल्ट करेगा तो 3 साल तक की सजा हो जाए।
0: श्री प्रसाद ने कहा कि कल जब कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे गोवा गए थे तब भी पार्टी के कार्यक्रम में वंदे मातरम के केवल 2 ही छंद गाए गए। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज कहा कि डेरगांव दीमापुर पाइपलाइन के चालू होने से नागालैंड अब पूर्वोत्तर गैस ग्रिड और राष्ट्रीय गैस ग्रिड से जुड़ गया है। श्री पुरी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये पूर्वोत्तर को भारत का विकास इंजन बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है और इस क्षेत्र को एकीकृत गैस आधारित अर्थव्यवस्था के करीब लाएगा। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रवर्तन निदेशालय कर्नाटक लोक सेवा आयोग में कथित प्रश्नपत्र लीक घोटाले से जुड़े मामले में राज्य में कई ठिकानों पर छापेमारी कर रहा है। आयोग के पूर्व अध्यक्ष शिवशंकरप्पा एस साहूकार पर प्रश्नपत्र लीक, ओएमआर शीट में छेड़छाड़ और पशु चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती के लिए प्रति उम्मीदवार 70 से 80 लाख रुपये की रिश्वत मांगने के आरोप हैं। आरोप है कि एक निजी कंपनी ने बिचौलिए के रूप में काम किया। निदेशालय ने शिवशंकरप्पा के आवास, आयोग के कुछ पूर्व सदस्यों के ठिकानों और निजी कंपनी से जुड़े कार्यालयों में तलाशी ली। झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं में अनियमितताओं को लेकर 24 दिन से जारी विरोध प्रदर्शन के बाद राज्य सरकार ने जेएसएससी सीजीएल परीक्षा 2024 और टीडीपीएल एजेंसी द्वारा संचालित सभी प्रतियोगी परीक्षाएं रद्द कर दी हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल शाम मंत्रिमंडल की विशेष बैठक के बाद ये घोषणा की।
3: पूरे तरीके से इसका ऑपरेशन होनी चाहिए। जो हमें जानकारी सीजीएल को लेकर हम लोग के समक्ष बताया गया और उस तथ्यों को समझ बूझने के बाद कैबिनेट ने जैसे सीजीएल को भी रद्द करने का निर्णय लिया।
0: जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने आज उधमपुर, रियासी और कठुआ जिलों में संदिग्ध लोगों की आवाजाही की सूचना मिलने के बाद कई जगहों पर तलाश अभियान शुरू किया। रियासी के सदनी जंगलों और कठुआ के हीरा नगर सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास कई गांवों में भी तलाश अभियान चलाया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी के प्रमुख साहसिक अभियान अपराजिता परांगला 2026 को रवाना किया। 30 दिन का यह अभियान 250 किलोमीटर लंबे परांगला दर्रे से होकर गुजरेगा जो हिमाचल प्रदेश की स्पीति घाटी को लद्दाख के चांगथांग क्षेत्र से जोड़ता है। तीनों सेनाओं के महिला अधिकारियों के नेतृत्व में 28 बालिका कैडेटों की टीम इसमें हिस्सा ले रही है। श्री सिंह ने कहा कि ऊंचाई वाले इस अभियान में युवा बालिकाओं की भागीदारी देश की महिलाओं के साहस, दृढ़ संकल्प और बढ़ती क्षमता का प्रमाण है।

0: हमारे संवाददाता ने बताया है कि मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने विझिंझम से यूरोप के लिए रवाना होने वाले पहले जहाज के 2 कंटेनर को रवाना किया।
1: पिछले साल 2 मई को बंदरगाह को देश को समर्पित किए जाने के बाद अब सीधे आयात निर्यात का काम शुरू हो गया है। इन सेवाओं के शुरू होने से यूरोप जाने वाले शिपमेंट के समय में काफी कमी आएगी। पहले विझिंझम से यूरोप पहुंचने में शिपमेंट को लगभग 2 महीने लगते थे, लेकिन अब इसके सिर्फ 28 दिनों में पहुंचने की उम्मीद है। बंदरगाह अधिकारियों के अनुसार फिलहाल ये सुविधा सिर्फ फुल कंटेनर लोड को ही संभालेगी। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पल्लुरुति की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: सेना उप प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह ने कहा है कि युद्ध की बदलती प्रकृति ने सशस्त्र बलों के लिए उभरती प्रौद्योगिकियों को तेजी से अपनाने और एकीकृत करने को अनिवार्य बना दिया है। नई दिल्ली में आज उन्होंने निगरानी और इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स पर भारतीय सैन्य समीक्षा को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि विशेषकर 2020 के बाद से युद्ध में तीव्र और व्यापक परिवर्तन आया है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में बढ़ते तनाव के बीच यूनाइटेड कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी ने क्षेत्र में पाकिस्तानी बलों द्वारा मानवाधिकारों के उल्लंघन की ओर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान आकर्षित किया है। पार्टी ने नागरिकों की मौत और घायल होने, मनमानी गिरफ्तारियों, जबरन गुमशुदगी और संचार व्यवस्था बंद किए जाने की खबरों पर गंभीर चिंता जताई। संगठन ने शांतिपूर्ण राजनीतिक कार्यकर्ताओं और मानवाधिकार रक्षकों की आवाजाही पर प्रतिबंध और उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई पर भी चिंता व्यक्त की है। सरकार ने सोशल मीडिया पर वायरल उस वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी नागरिकों के लिए 3 महीने का मुफ्त रिचार्ज घोषित किया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि ये दावा फर्जी है और वायरल वीडियो एआई द्वारा बनाया गया है। प्रधानमंत्री ने ऐसी किसी योजना का समर्थन नहीं किया है। मध्य प्रदेश के भिंड में ग्वालियर भिंड इटावा राजमार्ग पर कल देर रात वैन और ट्रक की टक्कर में 8 लोगों की मौत हो गई और 23 घायल हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर कारणों की जांच शुरू कर दी है। बंगाल की खाड़ी में बने गहरे दबाव के कारण झारखंड और आसपास के राज्यों में मौसम पूरी तरह बदल गया है। राजधानी रांची, जमशेदपुर और पलामू समेत राज्य के बड़े हिस्से में रात से ही मूसलाधार बारिश हो रही है। एक रिपोर्ट।
2: बंगाल की खाड़ी से उठा गहरा दबाव आज सुबह रांची से महज 100 किलोमीटर उत्तर पूर्व में केंद्रित हो गया है। इसके प्रभाव से झारखंड के उत्तर मध्य और उत्तर पश्चिमी हिस्सों में मूसलाधार बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है। मौसम विभाग ने चतरा, हजारीबाग, रामगढ़, पलामू और गढ़वा जिलों के लिए भारी से अत्यंत भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 24 घंटों में ये डिप्रेशन पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में बिहार की ओर आगे बढ़ेगा, जिसका असर आगामी 2 दिनों तक झारखंड में रहने की उम्मीद है। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: इस बीच मौसम विभाग ने बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा और उत्तर प्रदेश में आज मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। अगले 2 दिन में उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और पूर्वोत्तर भारत में भी इसी तरह का मौसम रहेगा। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, केरल और माही में आज तेज वर्षा हो सकती है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। सरकार ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025 की घोषणा कर दी है। प्रमुख महिला बैडमिंटन डबल्स जोड़ी ट्रीसा जॉली और पुलेला गायत्री गोपीचंद समेत विभिन्न खेलों के 15 अन्य खिलाड़ियों को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया जाएगा। भारतीय फुटबॉल के दिग्गज खिलाड़ी इसैया अरुमनैया गम को अर्जुन पुरस्कार लाइफ टाइम से सम्मानित किया जाएगा। एथलेटिक्स कोच परवीर सिंह, बॉक्सिंग कोच छोटेलाल यादव और शूटिंग कोच नेहा नंदकुमार चव्हाड़ को द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाएगा। वहीं पुणे स्थित आर्मी पैरालंपिक नोड को राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार दिया जाएगा। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने कहा कि राष्ट्रीय खेल पुरस्कार हर वर्ष खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन को सम्मानित करने के लिए दिए जाते हैं। BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में म्यांमा की थेत हतार थुजार को सीधे सेटों में हराकर भारत की उन्नति हुड्डा महिला सिंगल्स के दूसरे दौर में पहुंच गई हैं। अगले दौर में उनका मुकाबला कनाडा की 13वीं वरीयता प्राप्त मिशेल ली से होगा। इस बीच मिक्स डबल्स स्पर्धा में

भारतीय जोड़ी आशीष सूर्या और अमृता प्रथमेश तथा तुर्की की जोड़ी एमरे सोनमेज और यासिमेन बेक्तास के बीच मैच जारी है। भारतीय जोड़ी ने पहला गेम 21-16 से जीत लिया है। घरेलू शेयर बाजार के सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में लगभग आधा प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 354 अंक गिरकर 77,374 पर, जबकि निफ्टी 81 अंक की गिरावट के साथ 24,206 पर था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पर्यावरण सहयोग पर आम सहमति बनाने के उद्देश्य से 12वें ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में संपन्न। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश, पंजाब और गुजरात के लिए नए प्रदेश प्रभारी और सह प्रभारियों की नियुक्ति की। प्रवर्तन निदेशालय ने कर्नाटक लोक सेवा आयोग में पेपर लीक घोटाले में कई ठिकानों पर छापेमारी की। झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा और उत्तर प्रदेश में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025 की घोषणा। त्रिशा जौली और पुलेला गायत्री गोपीचंद सहित 15 अन्य खिलाड़ी अर्जुन पुरस्कार के लिए नामित। और नई दिल्ली में BWF विश्व चैंपियनशिप में उन्नति हुड्डा महिला सिंगल्स के दूसरे दौर में। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं विमलेश। स्वागत है आप सबका उमंग कार्यक्रम में।
3: नमस्कार श्रोताओं, और मैं हूं अजीत। आइए सुनते हैं आज का सुंदर विचार जो हमें भेजा है कोहका भिलाई छत्तीसगढ़ से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी ने। बड़ा खूबसूरत लिखा है।
2: लिखते हैं, शुद्ध विचार, शुद्ध आचरण और शुद्ध मन ही सच्चे सुख का आधार है। मन की शुद्धता ही जीवन की सबसे बड़ी सुंदरता है।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इतने सुंदर विचार के लिए। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, सुधा, कविता, पंकज, आयुषी और मीहू।
2: संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव।
3: और धमधा ग्राम सुखरी कला छत्तीसगढ़ से अमित जंघेल, शगुन जंघेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल।
2: एनआर प्रसाद, अखिला प्रसाद, राजाजी नगर बेंगलोर से।
3: और ग्राम पुतकी कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे, नयन पांडे और सुमांशु पांडे।
2: सभी श्रोताओं को हमारा आभार संदेश भेजने के लिए।
3: तो श्रोताओं एक बार फिर से आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी में।
2: जी
3: श्रोताओं, आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही रोचक विषय पर। तो विमलेश जी, जरा आज का विषय तो बताइए।
2: अजीत जी, आज हम बात करेंगे हमारी भाषा हिंदी के बारे में और जानेंगे कि इसका प्रकाश कैसे जगह जगह फैल रहा है और दुनिया की दूसरी भाषाओं पर किस तरह इसका प्रभाव पड़ रहा है।
3: जी हाँ श्रोताओं, आज हम आपको बताएंगे कि किस तरह दुनिया की दूसरी भाषाओं में पहुंचे हमारी प्यारी हिंदी भाषा के शब्द।
2: जी,
3: यानी किस तरह दूसरी भाषाओं ने हमारी भाषा के कुछ शब्दों को अपना लिया। तो विमलेश जी, आपसे करें शुरुआत।
2: जी जरूर। तो अजीत जी, पहला शब्द है जंगल। देखिए, जब हम जंगल शब्द सुनते हैं तो हमारी आंखों के सामने घने पेड़, जंगली जानवर और प्रकृति का विशाल संसार नजर आता है ना।
3: जी,
2: लेकिन क्या आप जानते हैं अंग्रेजी भाषा में इस्तेमाल होने वाला जंगल शब्द भारत की ही देन है।
3: श्रोताओं, आपको बता दें कि यह शब्द संस्कृत के जंगल से विकसित होकर हिंदी में आया। प्राचीन भारतीय ग्रंथों में इसका प्रयोग वन प्रदेश या निर्जन भूभाग के लिए मिलता है।
2: जी,
3: हुआ ये कि जब 17वीं और 18वीं शताब्दी में अंग्रेज भारत आए तो उन्होंने यहाँ के विशाल वनों के लिए स्थानीय लोगों से यही शब्द सुना।
2: जी,
3: और इसे अंग्रेजी में जंगल के रूप में अपना लिया, है ना मजेदार बात।
2: हाँ बिल्कुल, वही जंगल, JUNGLE।
3: जी,
2: तो अजीत जी, आज दुनिया के किसी भी देश में यदि अमेज़न के वर्षा वनों, अफ्रीका के घने जंगलों या एशिया के वन क्षेत्रों की बात होती है या विशेषकर बच्चों की कहानियों की बात होती है, अजीत जी एक और बात, ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज जैसे शब्दकोश भी जंगल शब्द की भारतीय उत्पत्ति को स्वीकार करते हैं।
3: तो विमलेश जी, अब जानते हैं एक और शब्द के बारे में।
2: जी,
3: वो शब्द है शैम्पू। आज शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति है जो शैम्पू शब्द से परिचित ना हो, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इस शब्द की जड़ें भी भारत में है।
2: वाह, ये तो बड़ी नई और रोचक बात है।
3: जी विमलेश जी, ये शब्द उर्दू के चांपो या बोलचाल वाली हिंदी भाषा के चंपी शब्द से निकला है। चांपो का अर्थ है सर दबाना या मालिश करना। भारत में सिर पर तेल लगाकर मालिश करने की परंपरा सदियों से चली आ रही है।
2: जी बिल्कुल, 18वीं शताब्दी में अंग्रेज अधिकारी भारत में सिर की मालिश करवाने लगे थे। उन्हें ये अनुभव इतना अच्छा लगा कि वे इस परंपरा को अपने देश ले गए। उन्होंने चांपो शब्द को अंग्रेजी उच्चारण के अनुसार शैम्पू में बदल दिया। श्रोताओं, शुरुआत में शैम्पू का अर्थ विदेश में केवल सिर की मालिश करना ही था,
3: लेकिन बाद में जब बाल साफ करने वाले विशेष द्रव बनने लगे तो धीरे धीरे उनका नाम भी शैम्पू पड़ गया।
2: जी,
3: आज ये शब्द दुनिया की लगभग हर भाषा में प्रचलित है।
2: जी,
3: तो विमलेश जी, ऐसी जानकारी से सचमुच एक सुखद आश्चर्य होता है ना, और ये भी पता चलता है कि भाषाएं किस प्रकार एक दूसरे पर प्रभाव डालती हैं।
2: जी अजीत जी, एक और शब्द है जिसे अंग्रेजी भाषा ने बड़ी खुशी से अपनाया है, वो शब्द है पायजामा। ये शब्द भी भारत की ही देन है। ये हिंदी उर्दू के उपयोग में लाए जाने वाला शब्द पायजामा से आया है। ये शब्द निर्माण की बात करें तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है, पाय अर्थात पैर और जामा अर्थात वस्त्र, यानी पैरों में पहनने वाला वस्त्र।
3: जी श्रोताओ, ब्रिटिश अधिकारी

0: भारत में रहते समय इस ढीले और आरामदायक पहनावे से बहुत प्रभावित हुए
1: जी।
0: वे इतने प्रभावित हुए कि वे इसे इंग्लैंड ले गए और अंग्रेजी में इसका उच्चारण पजामाज हो गया। आज दुनिया के लगभग हर देश में रात के आरामदायक वस्त्र के लिए यही शब्द प्रयोग में लाया जाता है।
1: तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की जानकारी कुछ प्रसिद्ध शब्दों के बारे में जो हिंदी, उर्दू या संस्कृत के हैं, लेकिन अब अंग्रेजी के साथ साथ और भी कई विदेशी भाषाओं में घुल मिल गए हैं। अब सुनिए आज का प्रश्न।
0: तो श्रोताओं, आज का प्रश्न है कि किसी दक्षिण भारतीय भाषा का शब्द बताइए जो आज हिंदी और कई भारतीय भाषाओं में बहुत प्रचलित है
1: जी।
0: इसका हिंट है विमलेश जी, जरा इसका हिंट दे दें।
1: इसका संबंध खान पान से है।
0: प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: किसी दक्षिणी भारतीय भाषा का शब्द बताइए जो आज हिंदी और कई भारतीय भाषाओं में बहुत प्रचलित है। इसका हिंट है,
0: इसका संबंध खान पान से है। श्रोताओ, आप अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर भेज सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे ईमेल यानी audio@cieet.nic.in पर भी अपने संदेश और विचार भेज सकते हैं।
1: एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो जरूर करें। यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करना चाहते हैं तो किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप करें NCERT बुक PDF। इस वेबसाइट से आप पुस्तकों को डाउनलोड कर सकते हैं।
0: अश्रोताओ, इन्हीं पुस्तकों को अगर आप ऑडियो बुक प्रारूप में भी सुनना चाहते हैं तो आपको जाना पड़ेगा NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल पर। आप इस चैनल पर जाकर हमारे कार्यक्रमों को या हमारे ऑडियो बुक्स को सुन सकते हैं। तो अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए सुनते हैं आज का सबसे पहला कार्यक्रम पंडित बिरजू महाराज।
1: कक्षा 7 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में कथक नृत्य सम्राट बिरजू महाराज के जीवन और भारतीय शास्त्रीय नृत्य के क्षेत्र में उनके अमूल्य योगदान के बारे में उनके ही साक्षात्कार द्वारा बताया गया है।
0: पंडित बिरजू

0: भारत विविधताओं का देश है। यहाँ की भिन्न भिन्न संस्कृति, भाषा, धर्म, कला और रोचक परंपराएं इसे अनूठा और अद्वितीय देश बनाती हैं। जहां तक नृत्य कलाओं की बात है, शायद ही दुनिया में कोई ऐसा देश है जहां इतनी नृत्य कलाएं हैं।
1: भारत के शास्त्रीय नृत्यों में भरतनाट्यम, कथक, कथकली, ओडिशी, मणिपुरी, कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम और सत्रिया नृत्य मुख्य रूप से जाने जाते हैं।
0: आज हम बात करेंगे महान कथक नृत्य सम्राट बिरजू महाराज की। वर्ष था सन 1958, स्थान कलकत्ता का नाट्य रंगमंच। मात्र 20 वर्ष की आयु में ही उन्होंने अपनी विलक्षण नृत्य प्रतिभा का प्रदर्शन कर सबको मानो सम्मोहित सा कर दिया था।
2: क्या बात,
3: क्या बात, पांवों में बिजली है।
2: वाह,
3: आओ भंगी माता,
2: देखो पांवों में ऐसी प्रतिभा,
3: अद्भुत, कितनी प्रभावशाली,
2: अति सुंदर, अति सुंदर, अति सुंदर, ये कभी नहीं देखा।
0: बिरजू महाराज का वास्तविक नाम बृजमोहन नाथ मिश्रा था। यही बृजमोहन नाम आगे चलकर बिरजू के जनप्रिय नाम से जाना जाने लगा। 4 फरवरी सन 1938 को उत्तर प्रदेश के लखनऊ में उनका जन्म हुआ था।
4: सरिया खेलते हैं किसन रामा, दूसरे पिसन रामा, तीसरे।
0: उनके जन्म के बारे में एक बड़ी दिलचस्प बात कही जाती है।
1: कहते हैं कि जिस दिन उनका जन्म हुआ था, उस दिन अस्पताल में उन्हें छोड़कर सारी कन्याओं का जन्म हुआ था। इसी वजह से उनका नाम बृजमोहन रखा गया था। उनके पिता का नाम जगन्नाथ महाराज था, उन्हें अच्छन महाराज भी कहा जाता था। वो रायगढ़ रजवाड़े में दरबारी नर्तक हुआ करते थे।
0: राज दरबार में नर्तक होने के कारण परिवार में किसी बात की कमी ना थी। बचपन से ही उन्हें कला, संगीत और नृत्य का वातावरण मिला। 5 की आयु में ही उन्होंने तबला और हारमोनियम बजाना सीख लिया था। वो घर और दरबार के नृत्य को देख देख कर 7 की आयु में नृत्य करना भी सीख गए थे।
1: एक दिन जब बिरजू

0: नृत्य का अभ्यास कर रहे थे तो उनके पिताजी कमरे में आए। प्रणाम पिताजी।
1: जीते रहो बेटा बिरजू। बेटा तुमने नृत्य का बहुत अच्छा अभ्यास कर लिया है, आज तुमने बहुत अच्छा नृत्य किया। लेकिन
0: लेकिन क्या पिताजी?
1: बेटा कहते हैं ना, कोई भी कला तब तक अधूरी ही रहती है जब तक गुरु का आशीर्वाद और तालीम ना हो।
0: जी पिताजी, मेरे गुरु तो आप ही हैं और मेरे चाचा शंभू महाराज और लच्छू महाराज।
1: तो अपनी कला को संपूर्ण कब करोगे, यानी तालीम कब लोगे?
0: जब आप कहें। आपसे दीक्षा ग्रहण करना तो मेरा परम सौभाग्य होगा।
1: लेकिन भेंट लिए बिना गंडा नहीं बांधूंगा।
0: जी, जैसी आपकी आज्ञा।
1: जीते रहो बेटा, सदा सुखी रहो, सदा सुखी रहो।
0: जी पिताजी।
2: कथक नृत्य की प्राचीन परंपरा रही है कि तालीम शुरू करने से पहले गुरु शिष्यों को गंडा बांधते थे और शिष्य गुरु को दक्षिणा या भेंट देते थे। वही परंपरा आज भी चली आ रही है। गंडा गुरु और शिष्य के बीच एक पवित्र रिश्ता होता है। गुरु के बांधे हुए गंडे को शिष्य अक्सर आजीवन धारण करते हैं।
3: तब उन्होंने अपने शिष्य बिरजू को गंडा बांधा। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन पिता की मृत्यु के बाद घर पर गरीबी छा गई। एक साक्षात्कार में उन्होंने अपने जीवन के कुछ अनुभव साझा किए थे, आइए सुनते हैं।
4: पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। कृष्ण से जुड़ा नृत्य है कथक, जिसमें आप पारंगत भी हैं और कई दशकों से आप इस नृत्य की खिदमत कर रहे हैं। विरासत में मिला आपको ये नृत्य। अगर हम आपके शुरुआती दिनों की तरफ चलें, बहुत कम लोग आपके उन दिनों के बारे में जानते हैं और ख़ासकर आपके घराने के बारे में। कैसे शुरुआत हुई?
5: हमारे पर बाबा दुर्गा प्रसाद जी, ठाकुर प्रसाद जी, उससे पहले भी नृत्य रहा है और हम लोग हड़िया से निकले हुए लोग, 989 घर थे वहाँ पर। नवाब वाइज अली शाह ने जब बुला लिया हम लोगों को वहाँ लखनऊ में, तो राज दरबार में पूरी इज्जत, पालकी भेजना, सिपाही भेजना, बाबा को सवार करके ले जाना, तो ये सब कहानियाँ अम्मा बताती थी। जैसे हमारे अच्छन महाराज मेरे पिताजी रहे, मैं छोटा था तो बहुत खील बताशा जेब में पड़ा है और तालीम खाने में जाके बैठा हूँ, सब लोग रियाज कर रहे हैं, तो मैं देख के तबले पे कभी हाथ मारूँ, कभी वो हारमोनियम पकड़ लूँ। फिर अम्मा को आके मैं रसोई में बताऊँ कि अम्मा मुझे भी आता, तो उस वक्त ये उंगलियाँ भी मुझे नहीं आती थी कहाँ से ये बांध के, तो मैं गिर पड़ता था। तो अम्मा कहें अभी गिर जाते हो, तुम बड़े हो जाओ तो ठीक से नाचना। तो मेरे दिमाग में ये ज़रूर रहा कि मेरे बाबा पिताजी सबका नाम इतना रहा, तो मैं भी कोशिश करूँगा उस तरह से बढ़ने की कोशिश करूँगा।
4: अगर आपके उन संघर्ष के दिनों की हम बात करें, उस संघर्ष के दिन कैसे थे आपके?
5: मेरे ख्याल से एक समय तो हमारे घर में चार चार घोड़े, बग्घी, टमटम सबके नाम से, चाचा जी के नाम से बाबू, पर धीरे धीरे वो छीन होते होते, कहते ना एक दफ़ा तो आदमी उरूज नाम पकड़ता है, अभी धीरे धीरे सब चीज़ ख़त्म होने लगती है। और यहाँ तक हुआ कि कर्जदार हो गए हम लोग घर में। मैंने कहा अम्मा जो भी दाल रोटियों की खाऊँगा पर मैं रियाज करूँगा। पर अम्मा का आशीर्वाद और पिताजी का आशीर्वाद, तो बचपन में ही उन्होंने एक अम्मा को एक लफ्ज़ कहा था। अम्मा कहती थी बेटे को साथ ले जाओ, थोड़ा देखेगा समझेगा। तो कहे अम्मा ये परेशान करता है, कभी वो गुब्बारे मांगता है, कभी वो चॉकलेट मांगता है, तो बेहतर होगा कि मैं सिखा दूँगा घर की विद्या। तो मैं 7.5 साल की उम्र में मैं उनसे गंडा बंधवाया और वो भी मैंने 500 इकट्ठा किए थे, 25 रुपये 50 रुपये करके इनाम पाके। तो मैंने कहा बाबू, मैं अब, अम्मा ने कहा भाई आज शागिर्द कर लो। अम्मा कह लेगा मुझे मालूम तुम्हारा लड़का अमीर हो गया है, 501 रुपये दे दिए और एक पैसा ना मुझे दिया ना अम्मा को दे दिया ही नहीं, दिया ही नहीं। तो क्या करें करें, अब इसमें से नहीं दूंगा, ये मेरा नजराना है। मैं बड़ा भाग्यवान हूँ कि मेरे बाबू ने मुझे गंडा बांधा, उनका आशीर्वाद। और मेरे दिमाग में हरदम जैसे ही मैं खड़ा होता हूँ, मेकअप किया, कॉस्ट्यूम पहना, उस वक़्त चाचा और बाबू हमारे सामने होते एकदम, और ईश्वर की कृपा होती है। मैं कहता हूँ प्रभु।

0: मैं तैयार हो गया हूँ, दुल्हन बन गया हूँ, तुम अब नाचो आके मेरे बदन में तुम्हारे, क्योंकि तुमने मेरे बदन को पसंद किया है, तुम नाचो हम देखेंगे। ये मेरा
1: बहुत सुंदर बात। आपके बारे में हम सभी जानते हैं कि आप शास्त्रीय गीत संगीत में माहिर हैं, वाद्य यंत्रों पर आपकी बहुत अच्छी पकड़ है, और एक खास बात जो ये कि आप छोटे बच्चों को भी आप सिखाते हैं, वो जो बिल्कुल अभी 4 साल 5 साल की उम्र के हैं, उन्हें कैसे समझा पाते हैं इन सब चीजों को?
0: अरे उनको बड़े मजे में समझाता हूँ। तो एक मैंने अपने भतीजी को एक तिहाई बताई, तरथेता ऐसे करके, तो कल इसमें तो बहुत सा तरथही है, कैसे याद करूँ? तो मैंने कहा बेटा सब्जी खाते हो? हाँ खाते। पूड़ी खाती हूँ? हाँ खाते।
2: तो सब्जी पूड़ी, वाह वाह, तो सब्जी 3 मात्रा, पूड़ी 2 मात्रा, सब्जी पूड़ी और कचौड़ी, फिर आखिर में तो मीठा चाहिए, हलवा ला दे, हलवा ला दे, हलवा ला दे दे, वाह वाह वाह, तो वाह वाह, सब्जी पूड़ी और कचौड़ी, हलवा ला दे, हलवा ला दे, हलवा ला दे दे।
1: बहुत सुंदर महाराज जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।
3: साथियों, बिरजू महाराज ने कथक नृत्य में कई योगदान दिए। उन्होंने लखनऊ घराने की परंपरा को आगे बढ़ाया, नृत्य में नए आयाम जोड़े और देश विदेश में अपने शानदार नृत्य प्रदर्शन के द्वारा भारतीय कला विरासत के प्रति विश्व भर में सम्मान का भाव उत्पन्न किया।
4: बिरजू महाराज को उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए कई सम्मानों और पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जिनमें पद्म विभूषण, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, कालिदास सम्मान, फिल्म फेयर पुरस्कार और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार शामिल हैं।
3: जनवरी 2022 को नई दिल्ली में इस महान कलाकार का देहावसान हो गया। उनकी आयु 83 वर्ष थी। उनके निधन से भारत के कला जगत को एक बड़ी क्षति हुई है, लेकिन उनकी महान विरासत हमेशा जीवित रहेगी और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देती रहेगी।
5: पंडित बिरजू महाराज, कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, ध्वन्यांकन मोहम्मद फैजान खान, कलाकार परवेज गौहर, शिमाइला परवेज, बाबला कोचर, अरशद अहमद खान और सुनील लोहिया, नाट्य आलेख अजीत होरो, संपादन जगबंधु जाना, निर्माण विमलेश चौधरी, विशेष आभार राज्यसभा टीवी तथा प्रस्तुति CIET NCERT, नई दिल्ली, भारत। अभी आपने सुना ये कार्यक्रम बिरजू महाराज।
6: अभी कुछ दिन पहले मेरे मिनी टेम्पो की हेडलाइट बंद हो गई। मैकेनिक बोला, भाई रात को मत चलाना। हमने सोचा यार इतना तो चलता है, रोज का रास्ता है, मैं जानता हूँ।
7: आगे एग्जिट नहीं दिखा और बाइक वाले ने इंडिकेटर भी नहीं दिया।
6: चलता है बोलने से किसी की जिंदगी भी रुक सकती है।
8: वाहन चलाने से पहले हमेशा ये सुनिश्चित करें कि हेडलाइट ठीक से काम कर रही हो। सही रोशनी से रास्ता भी साफ दिखाई देता है और आसपास चल रहे वाहन भी दिखाई देते हैं।
5: और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम भगत सिंह।
9: इस कार्यक्रम में महान स्वतंत्रता सेनानी और अमर शहीद भगत सिंह के जीवन और देश की बलिवेदी पर उनकी शहादत के बारे में विस्तार से उल्लेख किया गया है।
5: भगत सिंह,
10: अपने देश के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कुछ नारे बहुत प्रचलित हुए, जैसे बंकिम चंद्र चटर्जी का वंदे मातरम का नारा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जय हिंद का नारा, लोकमान्य तिलक की ललकार कि स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, और महात्मा गांधी की पुकार, अंग्रेजों

0: भगत सिंह का जन्म 26 सितंबर सन 1907 को लायलपुर के बंगा गांव में हुआ था और चाचा अजीत सिंह और स्वर्ण सिंह प्रसिद्ध देशभक्त थे। चाचाओं के कंधे पर चढ़कर घूमने वाले भगत सिंह ने बचपन से ही देशभक्ति और निर्भीकता का पाठ पढ़ा था। वे अभी 12 वर्ष के ही थे कि अमृतसर के जलियांवाला बाग में जनरल डायर के हुक्म से सैकड़ों निहत्थे निर्दोष लोगों को गोलियों से भून डाला गया। भगत सिंह के बालक मन पर इस घटना का बड़ा गहरा असर पड़ा।
1: कौन है?
2: मैं हूं अमरो, भगत सिंह। पर तू इतनी रात को यहाँ आंगन में बैठी क्या कर रही है?
1: तुम्हारा ही रास्ता देख रही थी भाई। कहाँ चले गए थे तुम?
2: तीर्थ करने चला गया था, अमृतसर।
1: अमृतसर? अच्छा अच्छा, दरबार साहब में मत्था टेकने गए थे क्या?
2: नहीं बहन, मैं तो जलियांवाला बाग की मिट्टी को मत्था टेकने गया था, जहां त्योहार के दिन सैकड़ों बेकसूर निहत्थे बंदों का खून गिरा था। ये देख।
1: ये इस शीशी में क्या है?
2: इस शीशी में खून से रंगी वही मिट्टी है।
1: हाय रब्बा, इस खून वाली मिट्टी का क्या करोगे वीर जी?
2: मैं इसकी पूजा क्या करूंगा अमरो? ये मिट्टी मुझे देश पर कुर्बान होने वाले शहीदों की याद दिलाएगी। तू देखना बहन, इसी मिट्टी से शहीदों की नई फसल पैदा होगी। अंग्रेज सिर काटते काटते थक जाएंगे, मगर हम सिर कटाते नहीं थकेंगे। और अब उन्हें हमारा देश छोड़कर जाना ही पड़े।
1: धीरे बोलो, किसी ने सुन लिया तो थाने में रपट हो जाएगी।
2: अच्छा ही है, अंग्रेजों की पुलिस जान जाएगी कि एक और दीवाना सिर कटाने को तैयार हो गया है। हाँ, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। वक्त आने पर बता देंगे तुझे ओ आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में।
3: स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद भगत सिंह ने लाहौर के नेशनल कॉलेज में दाखिला लिया। वहां उनकी जान पहचान अपने जैसे कई और आजादी के दीवानों से हुई। इन लोगों ने मिलकर भारत नौजवान सभा का गठन किया। जल्दी ही इनका संपर्क उत्तर प्रदेश, बंगाल, महाराष्ट्र और दक्षिण भारत के क्रांतिकारी संगठनों के साथ हो गया। उत्तरी भारत के प्रमुख क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद भी इनके पास आते जाते रहते थे। ये सब लोग दिन रात देश को स्वतंत्र कराने के लिए प्रयत्नशील रहते।
0: फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया। भारत की दशा पर विचार विमर्श करने के लिए बनाए गए इस आयोग में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। भारतीयों ने इस बात का जमकर विरोध किया। हर जगह इस कमीशन का स्वागत काले झंडों और साइमन गो बैक के नारों से किया गया। अक्टूबर में साइमन कमीशन लाहौर आया। इसके विरोध में एक बहुत बड़ा जुलूस निकाला गया। पुलिस ने जुलूस पर अंधाधुंध लाठियां बरसाईं। बुजुर्ग नेता लाला लाजपत राय पूरी तरह जख्मी हुए और कुछ समय बाद इन्हीं चोटों के कारण उनका देहांत हो गया।
2: भगवती भैया, लाला जी की मौत का बदला लेना ही होगा।
4: वो तो ठीक है भगत सिंह, मगर हम बदला किससे लेंगे? लाला जी पर लाठियां बरसाने वाले सिपाही भी तो हमारे हिंदुस्तानी भाई थे।
2: हाँ, मगर उन्हें लाठी चलाने का आदेश देने वाला तो अंग्रेज था, सुपरिंटेंडेंट स्कॉट। मुझे लाला जी के बदन पर पड़ने वाली एक एक चोट की कसम है, मैं स्कॉट को जिंदा नहीं छोड़ूंगा।
3: चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह ने

0: स्कॉट को मारने की योजना बनाई। स्कॉट को पहचानने वाला साथी जयगोपाल अपनी साइकिल ठीक करने के बहाने थाने के ठीक सामने रुका हुआ था। एक अंग्रेज पुलिस अफसर को थाने से निकलते देख उसने इशारा किया। उसका इशारा पाते ही आजाद और भगत सिंह साइकिल पर आगे बढ़े। राजगुरु पैदल थे। इन लोगों ने पलक झपकते ही अंग्रेज अफसर का काम तमाम कर दिया। साथ में एक भारतीय सिपाही चानन सिंह भी मारा गया। ये लोग साइकिलों पर सवार होकर भाग निकले। इन्हें बाद में पता चला कि ये मरने वाला अंग्रेज अफसर स्कॉट नहीं बल्कि उसका सहयोगी सॉन्डर्स था। लगभग उसी समय भगत सिंह ने तय किया कि वे अपनी बात बाहरी दुनिया तक पहुंचाने के लिए एक धमाका करेंगे। दिल्ली के सेंट्रल असेंबली हॉल में बम फेंकने की योजना बनाई गई। इस बम से जोरदार धमाका हुआ। हॉल में धुआं भर गया लेकिन इससे कोई भी घायल नहीं हुआ। इसके बाद वहां क्रांतिकारी विचारधारा को स्पष्ट करने वाले गुलाबी रंग के पर्चे फेंके गए और भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने स्वेच्छा से गिरफ्तारी दी। हालांकि आजाद नहीं चाहते थे कि भगत सिंह गिरफ्तार हों। वे बम वाली घटना के दिन भगत सिंह और दत्त को वहां से हटाकर सुरक्षित स्थान पर ले जाने का पूरा प्रबंध कर चुके थे लेकिन भगत सिंह ने स्वयं ही गिरफ्तारी, जेल और फांसी का रास्ता चुना।
1: और ऐसा हुआ भी। 28 मार्च सन 1931 को क्रांतिकारी गतिविधियों के फलस्वरूप भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी गई। ये वो लोग हैं जो देश के लिए मरकर अमर हो गए।
2: और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ चेतना, जगबंधु
3: और मंजू जी के साथ विमलेश को आज्ञा दीजिए।
2: नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं कनकलता। ब्रिक्स देशों ने पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। भारत ने कहा, पर्यावरण संबंधी कार्रवाई विकासशील देशों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए हो। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत की चुनाव प्रणाली की प्रशंसा पर विदेश मंत्रालय ने कहा, देश की चुनाव प्रणाली की विश्वसनीयता सर्वविदित है। सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में छात्र प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की कथित कार्रवाई और पुलिस कर्मियों के विरुद्ध हिंसा के आरोपों की जांच के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित करेगा। पाकिस्तान के शीर्ष न्यायालय ने जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को चिकित्सा जांच के लिए अस्पताल भेजने का आदेश दिया। ईरान ने दोहराया, होर्मुज जलडमरू मध्य तब तक बंद रहेगा जब तक अमेरिका के साथ हस्ताक्षरित सभी शर्तें पूरी नहीं हो जाती। गोल में भारत ने श्रीलंका को पहले टेस्ट क्रिकेट मैच में 372 रन का लक्ष्य दिया। मेजबान टीम ने दिन का खेल समाप्त होने तक 4 विकेट पर 84 रन बनाए। और भारत की महिला डबल्स जोड़ी त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंची। और अब समाचार विस्तार से। भारत ने इस बात पर जोर दिया है कि पर्यावरण से जुड़े प्रयास लोगों पर केंद्रित, टिकाऊ और विकासशील देशों की वास्तविकताओं के अनुरूप होने चाहिए। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज नई दिल्ली में ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक में कहा कि ब्रिक्स की अध्यक्षता के दौरान भारत का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन से प्रेरित है। इसमें ग्लोबल साउथ की चिंताओं को एजेंडे में सबसे ऊपर रखा गया है और ब्रिक्स को सहयोग तथा स्थिरता के लिए समायोजन तथा नवाचार को बढ़ावा देने वाले मंच के तौर पर फिर से परिभाषित किया गया है। श्री भूपेंद्र यादव ने जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता के नुकसान, प्रदूषण और आपदा के खतरों जैसी बढ़ती वैश्विक पर्यावरणीय चुनौतियों पर प्रकाश डाला।
1: जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता का नुकसान और प्रदूषण, ये तीनों मिलकर एक बड़ा संकट पैदा कर रहे हैं। आपदाओं का बढ़ता खतरा भी दुनिया भर में पारिस्थितिकी तंत्रों को प्रभावित कर रहा है। ये चुनौतियाँ विकासशील देशों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि वे पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता, गरीबी उन्मूलन, खाद्य सुरक्षा और समावेशी विकास जैसी व्यापक विकास प्राथमिकताओं से जुड़ी होती हैं।
2: फूड सिक्योरिटी एंड इंक्लूसिव ग्रोथ।
0: श्री भूपेंद्र यादव ने भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता की 4 प्राथमिकताओं को रेखांकित किया। टिकाऊ जीवन शैली को बढ़ावा देना, वनीकरण, जंगल की आग का प्रबंधन तथा आपदा से उबरने की क्षमता विकसित करना, सर्कुलर इकोनॉमी और अनुकूलन। बैठक का समापन संयुक्त मंत्री स्तरीय बयान की स्वीकृति के साथ हुआ।

0: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने घोषणा की है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक 2 अक्टूबर से एक महीने का अभियान बैंकिंग फॉर यूथ शुरू करेंगे। आज शाम नई दिल्ली में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक सम्मेलन के समापन भाषण में उन्होंने कहा कि इस अभियान का प्राथमिक उद्देश्य युवाओं को वित्तीय क्षेत्र से जोड़ना और उनकी वित्तीय यात्रा में मार्गदर्शन करना होगा। उन्होंने बताया कि अभियान का लक्षित समूह 16 वर्ष और उससे अधिक आयु के युवा पेशेवर होंगे। वित्त मंत्री ने कहा कि ये अभियान युवा ग्राहकों के साथ निरंतर जुड़ाव के लिए एक मंच के रूप में कार्य करेगा, जिससे उनकी भावी उद्यमशीलता की यात्रा सुगम होगी। आज समाप्त हुए 2 दिन के सम्मेलन में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं के नेतृत्वकर्ता एक साथ आए। इस कार्यक्रम के दौरान प्रमुख प्राथमिकताओं, उभरते अवसरों और बैंकिंग तथा वित्तीय क्षेत्र के बदलते परिदृश्य पर विचार विमर्श किया गया। इस बीच क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों RRB ने पिछले एक साल के दौरान ऋण वितरण में काफी बढ़ोतरी दर्ज की है। वित्त मंत्रालय ने बताया है कि वर्ष 2025-26 के दौरान कुल बकाया ऋण में 10.3% की वृद्धि हुई है। छोटे शहरों और गांवों का कुल बकाया ऋण 2024-25 में लगभग 5,24,000 करोड़ रुपए से बढ़कर वर्ष 2025-26 में 5,78,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। मंत्रालय ने बताया है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने ऋण वितरण सुविधा का विस्तार करके और जरूरतमंद तबकों पर अधिक ध्यान केंद्रित करके ग्रामीण आर्थिक विकास तथा वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना जारी रखा है। भारत ने इंडोनेशिया में आए भीषण भूकंप से हुए जानमाल की हानि पर गहरा शोक व्यक्त किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि भारत इस त्रासदी से बेहद दुखी है। भारत इंडोनेशिया को राहत और बचाव कार्यों में हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत की चुनाव प्रणाली की प्रशंसा करने और अमेरिकी चुनावों में मतदाता पहचान पत्रों की कमी पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के टिप्पणी का जिक्र करने पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि भारत की चुनाव प्रणाली की विश्वसनीयता सर्वविदित तथ्य है। बांग्लादेश से ऊर्जा संबंधी अनुरोध प्राप्त होने की खबरों पर श्री जायसवाल ने कहा कि भारत का बांग्लादेश के साथ ऊर्जा सहयोग जारी है। उन्होंने कहा कि अतिरिक्त अनुरोध के संबंध में भारत अपनी आवश्यकताओं, शोधन क्षमता और उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए इसकी जांच कर रहा है। शहजाद भट्टी आतंकी नेटवर्क को लेकर भारत के दावों पर पाकिस्तान की प्रतिक्रिया पर श्री जायसवाल ने कहा कि भारत सरकार अपने इस रुख पर कायम है। श्री जायसवाल ने कहा कि आतंकवाद से निपटने के लिए भारत का संघर्ष जारी रहेगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में हो रहे विरोध प्रदर्शनों पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि इस क्षेत्र में स्थानीय आबादी को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से सहानुभूति और एकजुटता की जरूरत है।
1: जैसा कि मैंने बताया कि बहुत सारे लोगों की जाने गई हैं वहाँ, और साथ ही साथ बहुत सारे लोग वहाँ हताहत हुए, उसके अलावा बहुत लोगों को इंजरीज भी आई हैं, और कि वहाँ पर जो एसेंशियल कमोडिटीज है, जो आम चीजें हैं, आम वस्तुएं हैं रोजमर्रा के, उस पर भी काफी रोक लगाया गया है। और हालात ऐसी है कि जो वहाँ पर लोग हैं उनको अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से सिंपैथी की, सॉलिडेरिटी की जरूरत है और वो उनको मिलना चाहिए।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि दिल्ली में हाल में छात्र प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की कथित कार्रवाई और पुलिस कर्मियों के विरुद्ध हिंसा के आरोपों की जांच के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित की जाएगी। एक रिपोर्ट।
2: समिति में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश, पूर्व पुलिस महानिदेशक और CBI के पूर्व निदेशक शामिल होंगे। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि समिति के अन्य सदस्यों के नाम पर विभिन्न पक्षों से सुझाव मिलने के बाद कल आदेश जारी किया जाएगा। न्यायालय ने कहा कि समिति महिला प्रदर्शनकारियों से जुड़े यौन उत्पीड़न और ऑनलाइन उत्पीड़न के आरोपों तथा सोशल मीडिया के जरिए अन्य संवेदनशील लोगों को निशाना बनाए जाने के मामलों की भी जांच करेगी। अदालत ने कहा कि 20 जुलाई को दिल्ली में संसद मार्च के दौरान हुए हिंसा से संबंधित वीडियो फुटेज और CCTV रिकॉर्डिंग समिति को सौंपी जाएगी। शीर्ष अदालत कॉकरोच जनता पार्टी CJP के नेतृत्व में हुए प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई और पुलिस कर्मियों के खिलाफ हिंसा के आरोपों से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। समाचार कक्ष से मैं जया भारती।
0: प्रवर्तन निदेशालय कर्नाटक लोक सेवा आयोग परीक्षा में कथित प्रश्न पत्र लीक मामले में राज्य में कई ठिकानों पर तलाशी अभियान चला रहा है। आयोग के पूर्व अध्यक्ष शिवशंकरप्पा S. साहूकार पर प्रश्न पत्र लीक OMR शीट में

0: छेड़छाड़ और सरकारी पशु चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती के लिए प्रति उम्मीदवार 70 से 80 लाख रुपए की रिश्वत मांगने के आरोप हैं। महाराष्ट्र में विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत मतदाता गणना प्रपत्र जमा करने की अंतिम तिथि कल समाप्त हो गई। इसके साथ ही राज्य में करीब 21.16% मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाए जाने की आशंका है। मतदाता सूची का मसौदा 24 अगस्त को प्रकाशित किया जाएगा। मतदाताओं के पास दावे और आपत्तियां दर्ज करने के लिए एक महीने का समय होगा। अंतिम मतदाता सूची 27 अक्टूबर 2026 को प्रकाशित की जाएगी। पश्चिम बंगाल सरकार ने अपने कार्यकाल के पहले 100 दिन की उपलब्धियों पर एक रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट में उद्योग, निवेश, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुशासन, सुरक्षा और जन कल्याण के क्षेत्र में किए गए कार्यों का उल्लेख किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार राज्य में नए औद्योगिक निवेश और रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं। बुनियादी ढांचे और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी परियोजनाओं में भी तेजी आई है। मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने कहा है कि कम समय में पश्चिम बंगाल के विकास की नई नींव रखी गई है। उन्होंने कहा कि सरकार के कामकाज का आकलन जनता करेगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने आज अधिकारियों को आदेश दिया है कि जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को अगले कुछ दिनों के भीतर व्यापक चिकित्सा जांच के लिए इस्लामाबाद के शिफा अंतर्राष्ट्रीय अस्पताल में स्थानांतरित किया जाए। खबरों के अनुसार सुप्रीम कोर्ट की 3 सदस्यीय पीठ ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के संस्थापक इमरान खान को अस्पताल में भर्ती कराने और उनके परिवार से मिलवाने की मांग वाली कई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया। ईरान ने दोहराया है कि होर्मुज जलडमरू मध्य समुद्र यातायात के लिए तब तक बंद रहेगा जब तक अमेरिका के साथ हस्ताक्षरित 14 सूत्री समझौता ज्ञापन के तहत ईरान की सभी शर्तें पूरी नहीं हो जाती। एक रिपोर्ट।
1: ईरान का कहना है कि विदेशी प्रतिबंधों को पूरी तरह हटाए जाने और सैन्य अभियानों को समाप्त किए जाने के बाद ही इस महत्वपूर्ण जलमार्ग को खोला जा सकता है। मोहम्मद बागेर गलिबफ ने चेतावनी देते हुए कहा कि उनका देश दुश्मन को उसके कार्यों और आक्रामकता के लिए करारा जवाब देने के लिए तैयार है। मोहम्मद बागेर गलिबफ ने राजनयिक प्रक्रिया का बचाव करते हुए कहा कि सैन्य शत्रुता को रोकने के लिए समझौता ज्ञापन में दी गई 60 दिनों की समय सीमा ने ईरान की राष्ट्रीय रक्षा और घरेलू अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान किया है। 60 दिनों की अवधि समाप्त होने के बाद भी ये मुख्य मतभेद अनसुलझे हैं। ईरान के लिए होर्मुज के माध्यम से यातायात को सामान्य बनाना नाकेबंदी की समाप्ति, सैनिकों की वापसी और मुआवजे पर निर्भर करता है। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका की ईरान के साथ कोई वार्ता नियोजित नहीं है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में ट्रंप ने कहा कि होर्मुज जलडमरू मध्य में अमेरिकी नाकाबंदी पूरी तरह से लागू है। विदेश मंत्रालय में सचिव श्रीप्रिया रंगनाथन ने फलस्तीन के विदेश मंत्री और प्रवासी मामलों के मंत्री वासिर अघा बेकियन शाहीन से मुलाकात की। फलस्तीन में भारत के प्रतिनिधि कार्यालय ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दोनों पक्षों ने भारत फलस्तीन द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। इनमें विकास सहयोग से जुड़े विभिन्न परियोजनाएं भी शामिल हैं। गोल में पहले क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत के 372 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए श्रीलंका ने चौथे दिन का खेल समाप्त होने तक 4 विकेट पर 84 रन बना लिए थे। यहां से भारत को जीत के लिए 6 विकेट की जरूरत है, जबकि श्रीलंकाई टीम जीत से अभी भी 288 रन दूर है। नई दिल्ली में BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी महिला डबल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। वहीं लक्ष्य सेन और उन्नति हुडा ने सिंगल्स के दूसरे दौर में जगह बना ली है। FIH हॉकी विश्व कप में आज भारतीय महिला टीम ने दक्षिण अफ्रीका को 6-1 के बड़े अंतर से हरा दिया। नीदरलैंड्स के अम्स्टरडैम में भारत के लिए नवनीत कौर, सुनेलिता तोपो, सुशीला चानू, दीपिका लाल रिमस्यामी और साक्षी राणा ने गोल दागे। अब भारतीय महिला टीम का अगला मुकाबला बृहस्पतिवार को इंग्लैंड से होगा। वहीं एक बहुप्रतीक्षित मुकाबले में कल अम्स्टरडैम में भारतीय पुरुष टीम का सामना चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान से होगा। अरब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
2: घरेलू शेयर बाजार के मुख्य सूचकांक आज गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 0.63% यानी 493 अंक नीचे आकर 77,235 पर पहुंच गया। वहीं निफ्टी 0.55% यानी 133 अंक लुढ़क कर 24,155 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग

0: विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज एक डॉलर की तुलना में 7 पैसे कमजोर हुआ और 95.68 रुपए पर बंद हुआ।
1: मौसम विभाग ने कल पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। पूर्वोत्तर भारत, दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, बिहार, छत्तीसगढ़, तटीय कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, केरलम और माहे, पश्चिम बंगाल तथा सिक्किम के कुछ हिस्सों में भी कल मध्यम से तेज बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग ने उत्तरी आंध्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल में कल बादल गरजने तथा बिजली गिरने की संभावना व्यक्त की है। आंध्र प्रदेश, बिहार, तटीय कर्नाटक, पूर्वी राजस्थान, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, दक्षिणी आंध्र, कर्नाटक, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी इसी तरह का मौसम रहने का अनुमान है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। ब्रिक्स देशों ने पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। भारत ने कहा, पर्यावरण संबंधी कार्रवाई विकासशील देशों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए हो। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत की चुनाव प्रणाली की प्रशंसा पर विदेश मंत्रालय ने कहा, देश की चुनाव प्रणाली की विश्वसनीयता सर्वविदित है। सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में छात्र प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की कथित कार्रवाई और पुलिस कर्मियों के विरुद्ध हिंसा के आरोपों की जांच के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित करेगा। पाकिस्तान के शीर्ष न्यायालय ने जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को चिकित्सा जांच के लिए अस्पताल भेजने का आदेश दिया। ईरान ने दोहराया, होर्मुज जलडमरू मध्य तब तक बंद रहेगा जब तक अमेरिका के साथ हस्ताक्षरित सभी शर्तें पूरी नहीं हो जाती। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम सायरा मुज्तबा विद द न्यूज एट 9। द हेडलाइंस। BRICS nations reaffirm commitment to environmental protection and sustainable development. New Delhi stresses environmental action must address needs of developing countries. India says credibility of country's election machinery well established globally as US President Donald Trump praises poll system. Supreme Court to form high-powered panel to probe allegations of police excesses and violence against security personnel during Delhi students' protests. Pakistan's top court orders transfer of jailed former Prime Minister Imran Khan to hospital for medical examination. Iran reiterates Strait of Hormuz to remain closed till all its conditions agreed with US are fully met. In men's cricket, India tighten grip on Gal test against Sri Lanka on day 4, host reel at 84 for 4 at stumps, chasing a 372-run target. And Indian women's doubles pair of Teresa Jolly and Gayatri Gopichand advanced to pre-quarterfinals of Badminton World Championships in New Delhi. And now the news in detail. BRICS nations today reiterated their commitment to strengthening collaboration on environmental protection and sustainable development. A joint ministerial statement adopted on the conclusion of 12th BRICS Environment Ministers meeting in New Delhi today said that BRICS nations also reaffirmed their commitment to advancing the full and effective implementation of the 2030 Agenda for Sustainable Development, the United Nations Framework Convention on Climate Change, and its Paris Agreement. The countries emphasized that enhanced international cooperation, including availability of finance from developed countries, is essential to enable developing countries to effectively address environmental and climate challenges, while advancing sustainable development and poverty eradication. India is chairing BRICS this year with the theme Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability. The BRICS ministers also expressed their appreciation for India's leadership in advancing the circular economy as an enabler of sustainable development. Earlier, speaking at the meeting, Union Minister for Environment, Forest and Climate Change, Bhupinder Yadav, emphasized that environmental action must remain people-centric, sustainable and responsive to the realities of developing countries.
3: We draw inspiration from the vision articulated by the Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji. I quote, our goal will be to redefine BRICS as a building resilience and innovation for cooperation and sustainability. Just as we brought inclusivity to our G20 presidency and placed the concern of the global south at the forefront of the agenda. Similarly, during our presidency of BRICS,

0: This is Akashvani. Good evening and welcome to the Tuesday edition of Market Mantra. My name is Rajesh Lake and with me is my co-anchor in Hindi, Nikhil Kumar.
1: नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र कार्यक्रम में कारोबारी खबरों के साथ हम एक बार फिर से हाजिर हैं और सबसे पहले आइए नजर डालते हैं अब तक के मुख्य आर्थिक समाचारों पर.
0: बेंचमार्क डोमेस्टिक इंडिसेस डिक्लाइन, सेंसेक्स ड्रॉप्स नियरली 500 पॉइंट्स, निफ्टी सेटल्स बिलो 24,200. रीजनल रूरल बैंक्स रजिस्टर ओवर 10% राइज इन ग्रोस लोन आउटस्टैंडिंग लास्ट ईयर. And global crude oil prices rise.
1: घरेलू शेयर बाजार में आज गिरावट का रुख, सेंसेक्स में लगभग 500 अंकों की सुस्ती और निफ्टी 24,200 अंक से नीचे पहुंचा. और ग्रामीण क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कुल बकाया ऋण में पिछले एक साल के दौरान 10% से अधिक की वृद्धि और वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में उछाल. और तमाम खबरों पर चर्चा के लिए आज फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ी हुई हैं आर्थिक विशेषज्ञ सुषमा रामचंद्रन. सुषमा जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है.
0: वार्म वेलकम सुषमा.
2: थैंक यू राजेश. थैंक यू निखिल.
0: बिफोर वी प्रोसीड, हियर्स अ डिस्क्लेमर. द व्यूज एंड ओपिनियंस एक्सप्रेस्ड बाय एक्सपर्ट्स इन दिस प्रोग्राम आर देयर ओन एंड नॉट दोज ऑफ आकाशवाणी. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: घरेलू शेयर बाजार के मुख्य सूचकांक आज गिरावट के साथ बंद हुए. सेंसेक्स 0.63% यानी 493 अंक नीचे आकर 77,235 पर पहुंच गया. वहीं निफ्टी 0.55% यानी 133 अंक लुढ़क कर 24,155 पर बंद हुआ. सेंसेक्स में लगातार तीसरे दिन सुस्ती आई जबकि निफ्टी छठे दिन गिरावट के साथ बंद हुआ. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के विस्तृत बाजार में मिड कैप सूचकांक आज 0.4% नीचे आए जबकि स्मॉल कैप में कोई खास बदलाव नहीं देखा गया. इससे पहले आज सुबह कमजोर वैश्विक संकेतों की वजह से बाजार लाल निशान के साथ खुले थे.
0: बेंचमार्क डोमेस्टिक इक्विटी इंडिसेस एंडेड इन द नेगेटिव टेरिटरी टुडे. द सेंसेक्स डिक्लाइन 493 पॉइंट्स और 0.63% टू क्लोज एट 77,235. द निफ्टी स्लिप्ड 133 पॉइंट्स और 0.55% to settle at 24,155. In the broader market at the National Stock Exchange, the mid-cap 100 index fell 0.4%, while the small-cap 100 index remained unchanged. The Sensex extended its losing streak for the third consecutive session, while the Nifty closed lower for the sixth straight day. While the markets opened lower amid weak global cues, both indices remained under pressure and traded in a range-bound manner through most of the session. However, towards the fag end of the session, the markets extended their decline amid selling pressure ahead of the weekly expiry of Nifty futures and options contracts.
1: सेंसेक्स में शामिल 30 में से 22 कंपनियों के शेयरों में आज नुकसान दर्ज हुआ. सबसे अधिक नुकसान वाले शेयरों में एशियन पेंट्स 2.4%, इन्फोसिस 2% और एचसीएल टेक 1.9% शामिल थे. वहीं इसके उलट एक्सिस बैंक में 0.9%, पावर ग्रिड में 0.7% और महिंद्रा एंड महिंद्रा में 0.5% की बढ़त दर्ज हुई.
0: इन द सेक्टोरल इंडिसेस ऑन द बीएसई 21 आउट ऑफ 28 सेक्टर्स एंडेड विद लॉसेस. Among the top laggards,

0: Focused IT declined 1.8%, information technology dropped 1.7%, and realty lost 1.3%. In contrast, mid-small private banks' quality tilt advanced 0.3%, hospitals as well as healthcare increased by 0.25%, and auto added 0.2%. The overall market breadth at the BSE was negative as shares of 2,384 companies declined, 1,930 advanced and 216 remained unchanged.
1: अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज एक डॉलर की तुलना में 7 पैसे कमजोर हुआ और 95.68 रुपए पर बंद हुआ. सुषमा, एक बार कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है.
2: थैंक यू
1: सुषमा. आज अगर हम सेंसेक्स और निफ्टी की बात करते हैं तो दोनों सूचकांक दबाव में रहते हुए ज्यादातर समय तक एक सीमित दायरे में कारोबार करते रहे, लेकिन कारोबार के आखिरी सत्र में निफ्टी फ्यूचर्स और ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट्स की साप्ताहिक एक्सपायरी से पहले बिकवाली के दबाव के कारण बाजार में गिरावट देखी गई. और साथ में अगर हम पिछले 2 हफ्ते की बाजार की चाल देखें और अब तक के 2 दिन के इस हफ्ते का कारोबार देखें तो गिरावट का जो रुख है वो क्या कहानी कहता है, हमारे श्रोताओं को बताएं.
2: देखिए, बात यह है कि ये जो हमारा हमारे स्टॉक मार्केट्स जो है, मैं हमेशा कहती हूँ वो सेंटिमेंट ड्रिवन है. और इस वक्त सेंटिमेंट जो है वो इसके ऊपर जो जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है वेस्ट एशिया में यूएस और ईरान के बीच में, उसके बारे में सेंटिमेंट जो सारे इन्वेस्टर्स स्टॉक मार्केट में है उनकी सोच उनके ऊपर है. और सबसे बड़ी चीज ये है कि जो तेल के दाम है वो ऊपर नीचे होते जा रहे हैं, वो वॉलिटिलिटी बहुत हो रही है. आज के दौर में एकदम से वो तेल के दाम, कच्चे तेल के दाम जो है वो बढ़ गए हैं, दे हैव रीच्ड $91. तो हमारे देश की जो आर्थिक स्थिति है, हमारी 85% ऑफ आवर फ्यूल रिक्वायरमेंट हम बाहर से ही मंगवाते हैं, तो इससे जो इन्वेस्टर्स की थोड़ा सा वो रुख बदल गया है ये पिछले 2-3 हफ्तों से. तो ये एक बहुत बड़ी वजह है, ये जो वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट है. और तेल के अलावा भी बाकी सारी जो काफी सारी प्रोडक्ट जो वहां से आती है वेस्ट एशिया से, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज का तो ब्लॉकेड है, बाकी रेड सी के बीच में से मर्चेंट शिपिंग के भी वहां पर तकलीफें आ रही है, क्योंकि यमन में से वहां अटैक हो रहे हैं. तो एक तो वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट है, और दूसरा ये है कि सारे फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स जो हैं वो इमर्जिंग मार्केट्स को छोड़ के अमेरिका की तरफ जा रहे हैं, वो वहां के बॉन्ड यील्ड्स बढ़ रहे हैं और उनके जो रिटर्न्स हैं वहां पर ज्यादा बेहतर हैं. तो ये काफी सारी चीजें हैं, मतलब और भी मैं चीजें गिना सकती हूँ लेकिन बहुत टाइम लगेगा. आगे
1: मुनाफा वसूली का कैसा रुख देखने को मिला है इन दिनों के दौरान, खासतौर पे अगर डीआईएस की हम बात करते हैं तो?
2: खासकर हाँ जी,
1: डीआईएस की, घरेलू निवेशकों की बात करते हैं तो?
2: हाँ बिल्कुल, तो प्रॉफिट बुकिंग की भी बात है, लेकिन हमारे जो घरेलू निवेशक है वो ज्यादातर इस वक्त वो अभी भी इनकी जो फेथ है हमारी मार्केट में वो जारी है. और इसी वजह से हालांकि फॉर एफआईआईज हमें छोड़ के जा रही है, बड़े दबादब इस वक्त जा रही है, लेकिन बीच में अभी हाल ही में तो वापस भी आ रही थी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, क्योंकि यहाँ की जो असेसमेंट ये था कि वैल्यूएशन अब बिल्कुल ठीक हो गए हैं
1: जी.
2: तो अब हम वापस आ सकते हैं, लेकिन अब फिर जो रुख बदल गया है और वो चले गए हैं. डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स की जो बात कर रहे हैं, बिल्कुल इस वक्त तो खैर प्रॉफिट बुकिंग तो हो ही रही है, लेकिन वैसे वो इतना ज्यादा वो बेरिश ट्रेंड्स नहीं है डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के.
0: सुषमा, आईटी वाज अमंग द बिगेस्ट लैगार्ड्स टुडे, सो इज द वीकनेस लिंक्ड टू वैल्यूएशंस, यूएस डिमांड कंसर्न्स और द करेंसी फैक्टर्स और प्रॉफिट बुकिंग?
2: आई वुड से दीज आर लॉन्ग टर्म इश्यूज एज फार एज आईटी सर्विसेज आर कंसर्न्ड. The perception that you know IT services are not going to be able to match the match the kind of AI technology that has sprung up in the United States. So I think that it is linked to that. The fact that, of course, that in America things the stock markets are rebounding just now at a time when ours are going down. we have to remember

0: that for America, for the U.S., when oil prices go up, while it might be uncomfortable for consumers, the fact is that they, as an exporting nation, producing an exporting nation, for them it comes as a benefit. So the situation is very different. And coming back to IT services, the perception has been for quite some time that there is going to be a problem with the IT services industry because of the introduction of AI. And I think that's not really so. You're going to have so many more applications of AI, and it's going to be these IT services companies which are going to be doing that kind of work on applications.
1: Okay. Auto and pharma, Sushma, showed relative resilience today. Is this defensive positioning or evidence of sector-specific strength?
0: I would say it's sector-specific strength because, you know, pharma is definitely one of our strongest exports, one of our strongest sectors. And auto, of course, as you know, you must have read the reports, the demand has risen exponentially. And even in rural areas, that was the area that people were worried about, two-wheelers, there also the demand has gone up. So auto is an area that is certainly doing well. Even in exports, auto is doing well. So certainly, I think that is a strength for both these areas.
1: Okay. And also the Indian equities, as you very rightly pointed out, they came in under pressure today with the Sensex falling 493 points and the Nifty extending its losing streak. Now, is this a temporary bout of risk aversion, or is the market signaling a more meaningful change in trend?
0: Well, that's very difficult to say right now, because we would have to see the market for a while. I know, of course, the market has been, going down in the last few weeks. There has been a bearish trend. But I think more of what is happening in the market is a reaction to external developments and the perception that, what is happening between U.S. and Iran could have an adverse effect on our growth.
2: सुषमा, थोड़ा सा अगर पीछे जाकर के हम आपसे बात करें तो जो भारत का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है उसमें हमें बढ़ोतरी देखने को मिली, 707 अरब अमेरिकी डॉलर तक के हम पहुंच चुके हैं। लेकिन यहां पर फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट बैंक अकाउंट की जो बात है, विदेशी मुद्रा का एक इनफ्लो उसमें आया है, तो इससे आप किस तरह से देखते हैं, खासतौर पर ऐसे समय में जब लिक्विडिटी बढ़ाने की बात है और स्टेबिलिटी होनी चाहिए रुपए में और देश की एक्सटर्नल सेक्टर स्ट्रेंथ को भी मजबूत करने की लगातार बात हम कर रहे हैं।
0: देखिए, ये जो स्कीम बनाई है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, उससे बहुत फायदा हुआ है। मतलब इनफ्लोस की बात आपने की, ये पीएनआरपी की वजह से हुई है, और लेकिन उससे इतना सपोर्ट रूपी को नहीं मिला जितना सोचा जा रहा था
2: जी।
0: और रूपी डिप्रिसिएशन, खैर हम समझ सकते हैं कि वो कम, मतलब हॉल्ट हो गई है, बंद हो गई है डिप्रिसिएशन, लेकिन वो स्ट्रेंथन नहीं हुआ है रूपी। तो ये थोड़ी सी शायद आरबीआई माइट बी लिटिल कंसर्न्ड अबाउट दैट, पर मेरे ख्याल में क्योंकि हमारे रिजर्व्स बहुत अच्छे हैं इस वक्त, और दूसरी एक बहुत अच्छी बात है, हमारा जो करंट अकाउंट डिफिसिट है वो बहुत ही छोटा है इस वक्त। मेरे ख्याल ये जो जून के क्वार्टर में, अप्रैल में, जून क्वार्टर में, जिसमें ये अभी ये वॉर हुआ था और जिसमें इतना डर लग रहा था कि हम बहुत ज्यादा बहुत महंगा तेल इम्पोर्ट कर रहे हैं, इससे करंट अकाउंट डिफिसिट बढ़ जाएगा, लेकिन मेरे ख्याल 0.6% ही हुआ है हमारा करंट अकाउंट डिफिसिट इस वक्त।
2: सुषमा, इसमें एक चीज और पूछना चाहूंगा मैं आपसे, जो इस तरह के कदम उठाए गए हैं आरबीआई की तरफ से, सरकार जो भी प्रयास कर रही है उन्हें आप मतलब किस तरह से देखती हैं, क्या ये इस तरह के कदम आगे भी उठाए जाने की संभावना रहती है जहां पर स्टेबिलिटी देने की बात हम करते हैं तो?
0: हाँ, देखिए, आरबीआई ये वक्त वक्त पर ये कदम उठा देती है। अभी ये एफसीएनआरबी का जो ये इतने स्कीम्स आए हैं वो इसी वजह से थे, टू नॉट जस्ट टू स्ट्रेंथन द रूपी, इनका ये था टू गिव मोर कॉन्फिडेंस टू इन्वेस्टर्स, ये भी था कि इन्वेस्टर्स को भी थोड़ा कॉन्फिडेंस हो जाए और ये हम ये कि हमारे यहाँ रुपीस, मतलब डॉलर्स डालने से उनको आराम से उनको निकाल भी सकते हैं। तो यहाँ डाल भी सकते हैं।

0: निकाल भी सकते हैं, तो ये इन्वेस्टर्स को कॉन्फिडेंस हो जाता है। इसमें साइड इफेक्ट ये है कि मतलब रूपी की डिप्रिसिएशन कम हो गई, लेकिन जैसे मैंने कहा कि इतना वो अप्रिशिएट नहीं हुआ रूपी, लेकिन जो गिरने की जो तकलीफ हो रही थी वो तो कम हो गई है। हाँ, अगर आगे आगे के दिनों में और कुछ मतलब उस कोई कोई डिफिकल्टीज आती हैं तो आरबीआई ये वक्त वक्त पे ये चीज निकालती रहती है।
1: जी, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों आरआरबी ने पिछले एक साल के दौरान ऋण वितरण में काफी बढ़ोतरी दर्ज की है। वित्त मंत्रालय ने बताया कि वर्ष 2025-26 के दौरान कुल बकाया ऋण में 10.3% की वृद्धि हुई है। छोटे शहरों और गांवों का कुल बकाया ऋण 2024-25 में लगभग 5,24,000 करोड़ रुपए से बढ़कर 2025-26 में 5,78,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने ऋण वितरण की सुविधा का विस्तार किया है और जरूरतमंद तबकों पर अधिक ध्यान केंद्रित किया है। मंत्रालय ने यह भी कहा है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने कमजोर वर्गों को 3,49,000 करोड़ रुपए का ऋण प्रदान किया है। सुषमा, इस तरह की जो खबर है, अगर आर्थिक मोर्चे के नजरिए से देखें तो क्या समझ सकते हैं इससे हम?
0: देखिए, मुझे असल में ये खबर अच्छी तरह से सुनाई नहीं। जी, थोड़ा सा आप संक्षेप में बता देंगे क्या बोले आप?
1: जी, मैंने ये बोला कि वित्त मंत्रालय ने ये कहा है कि 2025-26 के दौरान कुल बकाया ऋण में 10.3% की वृद्धि हुई है, जो कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की तरफ से जारी किए गए हैं।
0: अच्छा, हाँ। तो ये जो क्रेडिट फ्लोज जो है ये एकदम से बहुत बढ़ गए और रीजनल रूरल बैंक से ये क्रेडिट फ्लोज बढ़े हुए हैं। ये बहुत ही पॉजिटिव मेरे ख्याल डेवलपमेंट है और यही एक इनफैक्ट काफी कमेंटेटर्स ने इसके ऊपर बात की है कि जो जो इस वक्त काफी इस वक्त ये नैरेटिव बनाया जा रहा है कि क्योंकि स्टॉक मार्केट गिर रहे हैं और शायद हमारी जो आर्थिक स्थिति है वो अच्छी नहीं है, लेकिन अगर आप ये क्रेडिट फ्लोज की तरफ देखें तो ये दिखाया जा रहा है कि एक्चुअली हमारा जो इंडस्ट्रियल नहीं, इसका जो क्रेडिट पिकअप जो है वो काफी बढ़ गया है और आगे वाले दिनों में लगता है कि कंजम्पशन और बढ़ जाएगा।
2: मूविंग ऑन, डिफेंस मिनिस्ट्री हैज नोटिफाइड द 6 पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट PIL कंप्राइजिंग 405 स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट आइटम्स विद एन एस्टिमेटेड बिजनेस पोटेंशियल ऑफ 3,070 करोड़ रुपीज। These include 16 items of the Indian Coast Guard and 389 items of defense public sector undertakings. The list contains line replaceable units, subsystems, subassemblies, spares, components, and raw materials. The ministry said that this 6th PIL marks another step in the government's efforts to promote self-reliance in defense manufacturing under the Atmanirbhar Bharat initiative. It is expected to further expand opportunities for the Indian industry, strengthen the domestic defense manufacturing ecosystem, promote investment and innovation, and contribute to reducing dependence on imports. The ministry informed that the detailed list of items is also available on the Srijan portal, srijandefense.gov.in. Sushma, this is a step towards self-reliance in defense manufacturing and also towards making in India, giving it a big boost.
0: Yes, in fact, defense is an area of great progress in recent years. Not only are we manufacturing within the country, we are exporting also. So India has become a fairly large arms exporter. And of course, there have also, since the private sector is now being involved more and more, not just in defense, but in space. So you have so many private, public-private collaborations, as well as private collaborations with foreign companies, you know, which are now coming forward and setting up. So it's one of the big, I would say, success areas in the manufacturing sector.
1: आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि भारत अमेरिका साझेदारी को अब पारंपरिक व्यापार और निवेश से आगे बढ़कर साझा निवेश, सहयोगी नवाचार तथा सहभागी विकास और निर्माण की दिशा में आगे जाना चाहिए। वे आज मुंबई में इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने अमरीकी कंपनियों को अपने राज्य में आमंत्रित

0: हम सब लोग ये इंडो यूएस ट्रेड डील जो है इसकी तरफ देख रहे हैं, लेकिन ये जो है ये कोलैबोरेशन इन इंडस्ट्री ये भी उतना ही महत्व मतलब इतना ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि अमेरिकी कंपनी यहाँ इन्वेस्ट करे, लेकिन हमें ये याद रखना चाहिए कि हमारे देश में अभी भी बहुत सारी अमेरिकी कंपनीज हैं, यहाँ बेस्ड हैं, यहाँ उन्होंने काफी सारा इन्वेस्टमेंट किया है मैन्युफैक्चर क्षेत्र में, उनका बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन ये बढ़ना चाहिए। और इस वक्त जो अमेरिकी कंपनीज हैं उन्होंने बहुत ज्यादा निवेश चाइना में किया है, तो उतना तो वहां से अब वहां की जो हालात हैं वो इतने अच्छे नहीं लग रहे, तो धीरे धीरे करके वो हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं चाहते हैं कि चीन में बेस्ड जो अमेरिकी कंपनीज यहाँ आनी चाहिए, लेकिन इसके लिए हमें अपना ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अच्छा मतलब थोड़ा सा बेहतर बनाना चाहिए। तो मेरे ख्याल में ये वार्तालाप से काफी कुछ पैदा होना चाहिए, क्योंकि कंपनीज फिर हमें बताएंगी कि क्या तकलीफें हैं वहां यहाँ आने के लिए, जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में जो रेगुलेटरी प्रॉब्लम्स हैं, तकलीफें हैं वो बता देंगे, और उससे ये जो प्रोसेसेस हैं स्ट्रीमलाइन हो सकती है।
1: So, Sushma, both the ambassador and the Indian delegate also said that taking India-US bilateral trade to $500 billion by 2030 reflects the unmatched potential of the partnership between the two countries. Now, does this reflect anything that will take place soon between the India-US trade deal? Is it moving towards that?
0: We really can't say, because the Indo-US trade deal seems to be moving at a snail's pace. You know, I mean, we have been waiting for it since last year. And we keep hearing from both sides that, you know, it's just on the verge of being concluded. And yet it doesn't come. And in the meantime, we have all these stories coming in about tariff imposition under Section 301, under the new Congress legislation about against countries which are importing, buying oil from Russia. So these are things on which more clarity needs to be given by the American government. And it's only when these tariff barriers as well as non-tariff barriers are eased that we can think of raising trade to, you know, this kind of exponential level.
1: Moving on, the fifth edition of SEMICON India 2026 will be held from the 17th of next month in New Delhi. The three-day conference will witness the participation of more than 500 exhibitors and around 240 exhibiting companies from more than 40 countries. Prime Minister Narendra Modi will chair a roundtable conference with global CEOs from the United States, Japan, South Korea, Singapore, Germany, the Netherlands, and Malaysia. The theme of the fifth edition of the SEMICON India conference is Silicon to Systems, Building the Ecosystems.
2: एशियाई शेयर बाजारों में आज जापान का निक्केई 225 2.5% और दक्षिण कोरिया का कोस्पी 1.5% नीचे आ गया।
1: Global crude oil prices rose for the third consecutive session today amid uncertainty over a potential peace deal between the US and Iran. Brent crude was trading 0.5% up at $91.36 per barrel in intraday trade. West Texas Intermediate crude was trading 0.7% up at $85.07 per barrel when reports last came in. Very quickly, Sushma, at what oil price does the situation become materially negative for India's inflation and external balances?
0: Well, it's difficult to say, but definitely $91 is not a comfortable level for India. I mean, we would prefer it to be in the range of, say, $70 or even up to $80. Above that is definitely not comfortable for a country which is importing such huge quantities of crude oil.
2: आगे बढ़ते हैं। सोना मामूली गिरावट के साथ आज 1,54,080 रुपये प्रति 10 ग्राम पर था और चांदी 1% से अधिक की तेजी के साथ 2,33,164 रुपये प्रति किलोग्राम पर थी। सुषमा, जिस तरह से गोल्ड की गिरावट और बढ़त का जो एक सिलसिला है बहुत ही सीमित दायरे में हम देख रहे हैं, बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं हो रहा है, वही हाल चांदी का भी है, क्या लगता है इस मार्केट से आपको?
0: देखिए

0: गोल्ड का की जो इस वक्त वो गोल्ड गोल्ड एक सेफ हेवन एसेट माना जाता है, और इस वक्त की जो जियोपॉलिटिकल टेंशंस वगैरह हैं, पिछले दो सालों से गोल्ड की कीमत एकदम से बढ़ गई है, लेकिन बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तो मेरे ख्याल इस वक्त थोड़ा सा प्लेटो पे आ गई है. साथ में चांदी का भी दाम बढ़ गया. चांदी को हम सेफ हेवन एसेट पहले नहीं कहते थे, पर मेरे ख्याल में अब ये भी बन गया है, क्योंकि इसकी भी खरीदारी ये सेफ हेवन एसेट माना जा रहा है इस वक्त. तो क्योंकि बहुत ज्यादा बढ़ गए थे, मेरे ख्याल अब ये थोड़े प्लेटो हो रहे हैं, लेकिन बहुत नीचे नहीं आएंगे.
1: Sushma, what is the one key message that you will give to the investors? Should they remain cautious, use the correction to accumulate quality stocks, or wait for greater clarity on crude, geopolitics and global interest rates?
0: Well, I think number one, of course, they have to take a long-term view always. And the second is that, you know, you have to look at
2: जी सुषमा जी, इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और महत्वपूर्ण चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद.
1: Thank you, Sushma, for being with us. And before we close, the headlines once again. Benchmark domestic indices decline. Sensex drops nearly 500 points. Nifty settles below 24,200. Regional rural banks register over 10% rise in gross loan outstanding last year. And global crude oil prices rise. That's all we have in this edition of Market Mantra. Till tomorrow, good night.
3: Namaskar. इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं. आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें.
4: You were listening to a repeat broadcast of today's Market Mantra program, originally aired at 6:30 p.m.

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। कार्यक्रम गीत मेरे मनमीत में आपका स्वागत है और अभी आपके साथ है आपका ये दोस्त शमीम खान।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। भारत ने इस बात पर जोर दिया है कि पर्यावरण से जुड़े प्रयास लोगों पर केंद्रित, टिकाऊ और विकासशील देशों की वास्तविकताओं के अनुरूप होने चाहिए। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने

0: कल नई दिल्ली में ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक में कहा कि ब्रिक्स की अध्यक्षता के दौरान भारत का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन से प्रेरित है। इसमें ग्लोबल साउथ की चिंताओं को एजेंडे में सबसे ऊपर रखा गया है और ब्रिक्स को सहयोग तथा स्थिरता के लिए समायोजन तथा नवाचार को बढ़ावा देने वाले मंच के तौर पर फिर से परिभाषित किया गया है। श्री भूपेंद्र यादव ने जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता के नुकसान, प्रदूषण और आपदा के खतरों जैसी बढ़ती वैश्विक पर्यावरणीय चुनौतियों पर प्रकाश डाला।
1: The impact of climate change,
2: जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता का नुकसान और प्रदूषण, ये तीनों मिलकर एक बड़ा संकट पैदा कर रहे हैं। आपदाओं का बढ़ता खतरा भी दुनिया भर में पारिस्थितिकी तंत्रों को प्रभावित कर रहा है। ये चुनौतियाँ विकासशील देशों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि वे पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता, गरीबी उन्मूलन, खाद्य सुरक्षा और समावेशी विकास जैसी व्यापक विकास प्राथमिकताओं से जुड़ी होती हैं।
1: फूड सिक्योरिटी एंड इंक्लूसिव ग्रोथ।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक 2 अक्टूबर से एक महीने का अभियान बैंकिंग फॉर यूथ शुरू करेंगे। कल शाम नई दिल्ली में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक सम्मेलन के समापन भाषण में उन्होंने कहा कि इस अभियान का प्राथमिक उद्देश्य युवाओं को वित्तीय क्षेत्र से जोड़ना और उनकी वित्तीय यात्रा में मार्गदर्शन करना होगा। भारत ने इंडोनेशिया में आए भीषण भूकंप से हुई जानमाल की हानि पर गहरा शोक व्यक्त किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि भारत इस त्रासदी से बेहद दुखी है और भारत इंडोनेशिया को राहत और बचाव कार्य में हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। बांग्लादेश से ऊर्जा संबंधी अनुरोध प्राप्त होने की खबरों पर श्री जायसवाल ने कहा कि भारत का बांग्लादेश के साथ ऊर्जा सहयोग जारी है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में हो रहे विरोध प्रदर्शनों पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि इस क्षेत्र में स्थानीय आबादी को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से सहानुभूति और एकजुटता की जरूरत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत के चुनाव प्रणाली की प्रशंसा करने और अमेरिकी चुनावों में मतदाता पहचान पत्रों की कमी पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की टिप्पणियों का जिक्र करने पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि भारत के चुनाव प्रणाली की विश्वसनीयता सर्वविदित तथ्य है। इस बीच चुनाव आयोग ने कल देश की चुनाव व्यवस्था पर एक तथ्य पत्र जारी किया। आयोग ने बताया कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं व विधान परिषदों के चुनाव स्वतंत्र संवैधानिक संस्था भारत निर्वाचन आयोग की देखरेख में होते हैं। मतदान फोटो पहचान पत्र के आधार पर कराया जाता है। करीब 1 अरब मतदाताओं को मतदाता पहचान पत्र जारी किए जा चुके हैं। मतदाता आयोग के मतदाता सेवा पोर्टल से डिजिटल पहचान पत्र भी डाउनलोड कर सकते हैं। आयोग ने कहा कि करीब 12 लाख मतदान केंद्रों के लिए मतदाता सूचियां तैयार की जाती हैं। ये तथ्य पत्र अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भारत की चुनाव प्रक्रिया पर टिप्पणी के बाद जारी किया गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत जापान साझेदारी को और मजबूत करने पर जोर दिया है। उन्होंने जापानी कंपनियों से भारत में निवेश और कारोबारी साझेदारी बढ़ाने का आह्वान किया। नई दिल्ली में जापानी प्रतिनिधिमंडल को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के संबंध शांति, प्रगति और समृद्धि की साझा सोच पर आधारित हैं। उन्होंने बताया कि वित्त वर्ष 2025-26 में भारत और जापान के बीच द्विपक्षीय व्यापार 27 अरब 50 करोड़ डॉलर पहुंच गया है। जापान भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का 5वां प्रमुख देश है। हॉकी इंडिया ने भारतीय महिला हॉकी टीम के फॉरवर्ड लाल रेमस्यामी और पुरुष टीम के मिडफील्डर राजकुमार पॉल को अर्जुन पुरस्कार 2025 के लिए चुने जाने पर बधाई दी है। खेल मंत्रालय ने 17 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार के लिए चुना है। राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति इन खिलाड़ियों को सम्मानित करेंगी। भारतीय फुटबॉल के दिग्गज खिलाड़ी आई अरुमेनायम को खेल मंत्रालय ने अर्जुन पुरस्कार लाइफटाइम 2025 से सम्मानित किया जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय वीसी प्रमोद। BRICS nation has reiterated their commitment to strengthening collaboration on environmental protection and sustainable development. A joint ministerial statement adopted on the conclusion of the 12th BRICS Environment

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर निशिगंधा लेकर आप सभी के साथ हूं मैं जयती। सभी सुनने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। निशिगंधा में जो आज पहला गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है पूर्णिमा और आवाज है मुकेश और लता मंगेशकर की। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

आप सुन रहे हैं निशिगंधा और वो क्या कहते हैं ना कि ये जो मन के मौसम में समय के साथ बदलाव आता रहता है या यूं कहें कि मन के मौसम का भीगना किसी दुख का संकेत नहीं होता, सिर्फ कभी कभी एक बहुत खूबसूरत सी फीलिंग, बहुत सुंदर अनुभूति के कारण भी मन के मौसम में थोड़ा उथल पुथल होने लग जाता है। जैसे किसी स्मृति में छिपी आत्मीयता का अचानक सामने आ जाना, किसी आवाज की पहचान भीतर तक उतर जाना, या फिर किसी पुराने प्रेम पत्र का एक वाक्य बहुत देर तक अगर साथ ठहर जाए, और तब ये जो इमोशंस होते हैं, जो भावनाएं होती हैं, वो शब्दों से ज्यादा काम करने लग जाती हैं, और मन उन बातों को फील करने लग जाता है, या यूं कहें कि मन उन बातों को महसूस करने लग जाता है जिन्हें कभी नहीं कहा गया या जिन्हें शब्दों में ढाला ही नहीं गया, और मन ऐसे संबंधों को भी समझने लग जाता है, उनके भीतर छुपे हुए भावों को समझकर मन के मौसम में थोड़ा उथल पुथल होने लग जाता है, और भीतर की जो ये संवेदनाएं होती हैं, ये फीलिंग होती हैं, ये हमें सबसे ज्यादा मानवीय बनाने का काम करती हैं, और यही फीलिंग मन के मौसम को नम कर करके ये मन की जो जमीन है उनको उर्वर बनाती रहती है। सुन रहे हैं आप निशिगंधा और अगला गीत आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाज में, फिल्म तुमसा नहीं देखा से।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर और निशिगंधा में। अब जो गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं, फिल्म का नाम है तीसरी कसम, आवाज है आशा भोसले की। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

कैसे चुने सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। ये प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे, प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और निशिगंधा में आपके साथ हूं मैं जयती। अगला गीत मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाज में, फिल्म का नाम है फागुन।

थोड़ी देर पहले हम मन के जिस मौसम की बात कर रहे थे कि मन का मौसम जो है वो भी मौसमों की तरह बदलता रहता है। कभी कभी बिना कारण के भी मन के मौसम में नमी आ जाती है और कभी कभी ये मन का मौसम भी ना बड़ा रूखा सा हो जाता है। और कभी कभी क्या होता है कि कुछ अनकही बातें मन के भीतर परतों की तरह जमा होने लग जाती है। कोई पुराना प्रसंग याद आकर मन को भावुक भी कर देता है और कभी कभी बहुत छोटी सी बात भी मन को बहुत चोट पहुंचा जाती है। किसी अपने का बहुत छोटा सा नजरअंदाज कर देने वाला व्यवहार भी मन के अंदर घर बना लेता है। आंखें कारण खोजती हैं और मन अपने अर्थ को तलाश करता रहता है। और इस लड़ाई में, यूं कहें कि मन की इस लड़ाई में इंसान जो है ना वो क्या कोशिश करता है कि वो खुद को नॉर्मल दिखाने की यानी कि सामान्य दिखाने की कोशिश करता है, पर वो होता सामान्य नहीं है। भीतर की संवेदनाएं जो हैं वो अंदर ही अंदर व्याकुल करती रहती हैं और मन हर बार एक जगह ठहर कर कारण तलाश करता रहता है। बीते हुए जो पल होते हैं वो वर्तमान को अफेक्टेड करने लग जाते हैं, उस पर अपना असर डालने लग जाते हैं और मन जो है वो उलझा पुलझा अपने ही प्रश्नों के बीच और न जाने कितने प्रश्नों के उत्तर ढूंढने लग जाता है। और यही बदलता मौसम जब कहीं से कोई और संवेदनाओं की एक छोटी सी बूंद लेकर भी मन के ऊपर एक नमी पैदा करता है तो वो रिश्ता हमें सबसे ज्यादा करीब लाता है। और ऐसे में मन जो है वो सारे प्रश्नों के उत्तर तलाश करना छोड़कर थोड़ी देर ठहर कर बैठ जाना चाहता है। तो मन की और भी बहुत सारी बातें करेंगे, फिलहाल सुनते हैं एक सुंदर सा गीत

आप सुन रहे हैं निशिगंधा और निशिगंधा में हम बात कर रहे हैं मन के मौसम की। जनाब, ये जो मन का मौसम है ना, इसकी कहानी ऐसी है कि जितना लिखो जितना बोलो उतना कम है, क्योंकि मन के मौसम को शब्दों में बांधना ये जीवन का सबसे मुश्किल टास्क है। ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि इस मौसम के बहुत सारे रंग हैं और ये जो सारे रंग हैं ना, ये रंग हमारी भावनाओं के रंग हैं, और भावनाएं शब्दों में बांधी जा सके ऐसा हो ही नहीं सकता। पर कहते हैं ना कि हम अपने जीने के अंदाज को बदलकर, सोचने के अंदाज को बदलकर, हम मन के मौसम को अपने अनुसार इसमें बहुत सारे रंग भर सकते हैं। बहुत पुराना एक सुंदर सी पंक्ति है, बहुत पुरानी, कि कहते हैं कि सांस लेने का अगर नाम है जीना साहिर, तो सांस लेने के भी अंदाज बदलते रहिए। जी हाँ, एक तरह से जीवन जीते जीते कई बार जीवन भी ना बेरंग सा महसूस होने लगता है। तो कहते हैं कि जीवन को बदलने के लिए या जीवन में और सारी रंगों को भरने के लिए हमारे मन के मौसम का भी बहुरंगी होना जरूरी है। संबंधों को एक बार फिर से जीवित करने की जरूरत होती है, कुछ बातों को इग्नोर करने की जरूरत होती है, और फिर जीवन जीने का सलीका बदलकर हम मन के मौसम को भी बहुरंगी बना सकते हैं, अपनी सोच को बदल सकते हैं, जीवन में बहुत सारी पॉजिटिविटी को ला सकते हैं। और कहते हैं कि एक पॉजिटिव सोच 100 दरवाजे खोलती है सफलता के, इसलिए अपनी सोच में पॉजिटिविटी को बनाए रखिए। और अब जो गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है मेरा नाम जोकर, आवाज है मुकेश की, तो आइए सुनते हैं ये गीत।

जिस तरह मन के भावनाओं को या मन के मौसम को शब्दों में बांधना, शब्दों में ढालना सबसे मुश्किल टास्क है, ठीक वैसे ही प्रेम को लिखना दुनिया का सबसे आसान और सबसे मुश्किल काम। कहते हैं कि हमारी प्रीत का कुछ इस तरह बंधन हुआ होता, हमारी प्रीत का कुछ इस तरह बंधन हुआ होता, तुम्हारा मन हुआ होता, हमारा मन हुआ होता, बिठाकर नाव में तुझको नदी के पार पहुंचाता, बिठाकर नाव में तुझको नदी के पार पहुंचाता, जो तुम लहरें हुई होती और मैं साहिल हुआ होता, जो तुम लहरें हुई होती और मैं साहिल हुआ होता, हमारी प्रीत का कुछ इस तरह वंदन हुआ होता। वक्त आ चला है आपसे एक बार थोड़ी देर के लिए विदा लेने का। हमारी और आपकी मुलाकात होगी 2:10 पर। 2 बजे आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार, 2:10 पर कार्यक्रम होगा गीत सुहाने और हम होंगे आपके साथ। फिलहाल

छोड़े जाते हैं एक गीत के साथ। फिल्म का नाम है राजा और रंक, आवाज है मोहम्मद रफी की। आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। भारत ने इस बात पर जोर दिया है कि पर्यावरण से जुड़े प्रयास लोगों पर केंद्रित, टिकाऊ और विकासशील देशों की वास्तविकताओं के अनुरूप होने चाहिए। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कल नई दिल्ली में ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक में कहा कि ब्रिक्स की अध्यक्षता के दौरान भारत का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन से प्रेरित है। इसमें ग्लोबल साउथ की चिंताओं को एजेंडे में सबसे ऊपर रखा गया है और ब्रिक्स को सहयोग तथा स्थिरता के लिए समायोजन तथा नवाचार को बढ़ावा देने वाले मंच के तौर पर फिर से परिभाषित किया गया है। श्री भूपेंद्र यादव ने जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता का नुकसान, प्रदूषण और आपदा के खतरों जैसी बढ़ती वैश्विक पर्यावरणीय चुनौतियों पर प्रकाश डाला।
1: The impact of climate change,
2: जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता का नुकसान और प्रदूषण, ये तीनों मिलकर एक बड़ा संकट पैदा कर रहे हैं। आपदाओं का बढ़ता खतरा भी दुनिया भर में पारिस्थितिकी तंत्रों को प्रभावित कर रहा है। ये चुनौतियाँ विकासशील देशों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं कि वे पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता, गरीबी उन्मूलन, खाद्य सुरक्षा और समावेशी विकास जैसी व्यापक विकास प्राथमिकताओं से जुड़ी होती हैं।
1: फूड सिक्योरिटी एंड इंक्लूसिव ग्रोथ।
0: भारत ने इंडोनेशिया में आए भीषण भूकंप से हुई जानमाल की हानि पर गहरा शोक व्यक्त किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि भारत इस त्रासदी से बेहद दुखी है और भारत इंडोनेशिया को राहत और बचाव कार्यों में हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। बांग्लादेश से ऊर्जा संबंधी अनुरोध प्राप्त होने की खबरों पर श्री जायसवाल ने कहा कि भारत का बांग्लादेश के साथ ऊर्जा सहयोग जारी है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में हो रहे विरोध प्रदर्शनों पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि इस क्षेत्र में स्थानीय आबादी को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से सहानुभूति और एकजुटता की जरूरत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत की चुनाव प्रणाली की प्रशंसा करने और अमरीकी चुनावों में मतदाता पहचान पत्रों की कमी पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की टिप्पणी का जिक्र करते पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि भारत की चुनाव प्रणाली की विश्वसनीयता सर्वविदित तथ्य है। इस बीच चुनाव आयोग ने कल देश की चुनाव व्यवस्था पर एक तथ्य पत्र जारी किया। आयोग ने बताया कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं व विधान परिषदों के चुनाव स्वतंत्र संवैधानिक संस्था भारत निर्वाचन आयोग की देखरेख में होते हैं। मतदान फोटो पहचान पत्र के आधार पर कराया जाता है। करीब 1 अरब मतदाताओं को मतदाता पहचान पत्र जारी किए जा चुके हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक 2 अक्टूबर से 1 महीने का अभियान बैंकिंग फॉर यूथ शुरू करेंगे। कल शाम नई दिल्ली में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक सम्मेलन के समापन भाषण में उन्होंने कहा कि इस अभियान का प्राथमिक उद्देश्य युवाओं को वित्तीय क्षेत्र से जोड़ना और उनकी वित्तीय यात्रा में मार्गदर्शन करना होगा। इस बीच वित्त मंत्रालय के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों RRB ने ऋण वितरण में मजबूत वृद्धि दर्ज की है। सरकार ने घरेलू PNG कनेक्शन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है। ये योजना अगले महीने की 1 तारीख से लागू होगी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अनुसार योजना का उद्देश्य देश के ज्यादा से ज्यादा घरों तक साफ, सुरक्षित और किफायती पाइप्ड गैस पहुंचाना है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ओमान को बमबारी की धमकी दी है। 2 क्षेत्रीय अधिकारियों के मुताबिक राष्ट्रपति ट्रंप ओमान के ईरान के साथ होर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों की आवाजाही को लेकर समझौते के करीब पहुंचने से नाराज हैं। इस बीच ब्रिटेन के समुद्री निगरानी एजेंसी के अनुसार होर्मुज जलडमरू मध्य से बाहर निकल रहे एक जहाज पर एक मिसाइल से हमला हुआ। एक ईरानी अधिकारी ने कहा है कि जब तक अमरीका ईरान की शर्तों को पूरा नहीं करता तब तक जलमार्ग दोबारा नहीं खुलेगा। FIH हॉकी विश्व कप में कल भारतीय महिला टीम ने दक्षिण अफ्रीका को 6-1 के बड़े अंतर से हरा दिया। अब भारतीय महिला टीम का अगला मुकाबला बृहस्पतिवार को इंग्लैंड से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर गीत सुहाने की ये खूबसूरत महफिल और आपके साथ हूं मैं जयति। सभी सुनने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। गीत सुहाने में जो पहला गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है नगीना, आवाज है अनुराधा पौडवाल की। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

मैं सब लिख लेता हूं, मैं सब लिख लेता हूं, मन याद आंसू, मैं झरने पहाड़ आकाश भी लिख लेता हूं। मैं लिख लेता हूं वो तमाम रास्ते जो होकर गांव लोगों तक पहुंचते हैं। मैं लिख लेता हूं वो तमाम रास्ते जो होकर गांव लोगों तक पहुंचते हैं। मैं सब लिख लेता हूं, बस मेरी लिखावट में कभी घर नहीं आ पाया, बस मेरी लिखावट में कभी घर नहीं आ पाया। मैं सब लिख लेता हूं, मन याद आंसू, मैं झरने पहाड़ आकाश भी लिख लेता हूं। आप सुन रहे हैं गीत सुहाने, और अब जो गीत आप सुनेंगे आवाज है भूपिंदर और लता मंगेशकर की, और फिल्म का नाम है किनारा। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, और गीत सुहाने में आपके साथ हूं मैं जयती। और अब जो गीत आप सुनेंगे, आवाज है मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की, और फिल्म का नाम है ज्वेल थिफ। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

आप सुन रहे हैं गीत सुहाने और अब जो गीत आप सुनेंगे फिल्म का नाम है आकाश दीप और आवाज है लता मंगेशकर की। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

लोग रिश्तों की हिफाजत में बहुत कुछ लिखते रहे। लोग रिश्तों की हिफाजत में बहुत कुछ लिखते रहे। मैंने उसका नाम भी लिखना मुनासिब न समझा। मैंने उसका नाम भी लिखना मुनासिब न समझा। अगला गीत मोहम्मद रफी की आवाज में और फिल्म का नाम है मेरे हमदम मेरे दोस्त।

ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। सुन रहे हैं आप आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। और अब जो गीत आप सुनेंगे, गीत सुहाने की इस खूबसूरत महफिल में, फिल्म का नाम है बॉबी, आवाज है शैलेंद्र सिंह की। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

वक्त आ चला है एक बार फिर से आपको याद दिला दें कि अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 2 बजे एफएम गोल्ड पर आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। हमारी और आपकी मुलाकात होगी 2:10 पर और कार्यक्रम होगा रात सुरमई। तो आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। जिस गीत के साथ हम आपको छोड़े जा रहे हैं, फिल्म का नाम है मेरा नाम जोकर और आवाज है मुकेश की। मिलते हैं 2:10 पर, कार्यक्रम होगा रात सुरमई।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। भारत ने इस बात पर जोर दिया है कि पर्यावरण से जुड़े प्रयास लोगों पर केंद्रित, टिकाऊ और विकासशील देशों की वास्तविकताओं के अनुरूप होने चाहिए। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कल नई दिल्ली में ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक में कहा कि ब्रिक्स की अध्यक्षता के दौरान भारत का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन से प्रेरित है। इसमें ग्लोबल साउथ की चिंताओं को एजेंडे में सबसे ऊपर रखा गया है और ब्रिक्स को सहयोग तथा स्थिरता के लिए समायोजन तथा नवाचार को बढ़ावा देने वाले मंच के तौर पर फिर से परिभाषित किया गया है। श्री भूपेंद्र यादव ने जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता के नुकसान, प्रदूषण और आपदा के खतरों जैसी बढ़ती वैश्विक पर्यावरणीय चुनौतियों पर प्रकाश डाला। भारत ने इंडोनेशिया में आए भीषण भूकंप से हुई जानमाल की हानि पर गहरा शोक व्यक्त किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि भारत इस त्रासदी से बेहद दुखी है और भारत इंडोनेशिया को राहत और बचाव कार्यों में हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में हो रहे विरोध प्रदर्शनों पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि इस क्षेत्र में स्थानीय आबादी को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से सहानुभूति और एकजुटता की जरूरत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत की चुनाव प्रणाली की प्रशंसा करने और अमरीकी चुनावों में मतदाता पहचान पत्रों की कमी पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की टिप्पणी का जिक्र करने पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि भारत की चुनाव प्रणाली की विश्वसनीयता सर्वविदित तथ्य है। इस बीच निर्वाचन आयोग ने कल देश की चुनाव व्यवस्था पर

0: एक तथ्य पत्र जारी किया। आयोग ने बताया कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं व विधान परिषदों के चुनाव स्वतंत्र संवैधानिक संस्था भारत निर्वाचन आयोग की देखरेख में होते हैं। मतदाता फोटो पहचान पत्र के आधार पर कराया जाता है। करीब 1 अरब मतदाताओं को मतदाता पहचान पत्र जारी किए जा चुके हैं। ये तथ्य पत्र अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भारत की चुनाव प्रक्रिया पर टिप्पणी के बाद जारी किया गया है। असम सरकार ने बच्चों की सुरक्षा और कल्याण के लिए असम राज्य बाल संरक्षण नीति 2026 को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा ने बताया कि इससे बच्चों की देखभाल से जुड़ी सरकारी और निजी संस्थानों में एक समान सुरक्षा व्यवस्था लागू होगी। कैबिनेट ने असम औद्योगिक संबंध नियम 2026 को भी मंजूरी दी है। पश्चिम बंगाल सरकार ने अपने कार्यकाल के पहले 100 दिनों की उपलब्धियों पर एक रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट में उद्योग, निवेश, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुशासन, सुरक्षा और जनकल्याण के क्षेत्र में किए गए कार्यों का उल्लेख किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार राज्य में नए औद्योगिक निवेश और रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं। बुनियादी ढांचे और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी परियोजनाओं में भी तेजी आई है। दिल्ली सरकार की दिल्ली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को पेंशन का आधिकारिक पत्र 26 अगस्त को तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित होने वाले भव्य कार्यक्रम में सौंपा जाएगा। सरकार ने बताया है कि 1 सितंबर से पेंशन की राशि सीधे पात्र महिलाओं के बैंक खातों में पहुंचनी शुरू हो जाएगी। विदेश मंत्रालय में सचिव श्री प्रिया रंगनाथन ने फिलिस्तीन के विदेश मंत्री और प्रवासी मामलों की मंत्री वॉर्सेन अघाबैकियन शाहीन से मुलाकात की। फिलिस्तीन में भारत के प्रतिनिधि कार्यालय ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दोनों पक्षों ने भारत फिलिस्तीन द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ओमान को बमबारी की धमकी दी है। दो क्षेत्रीय अधिकारियों के अनुसार राष्ट्रपति ट्रंप ओमान के ईरान के साथ हॉर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों की आवाजाही को लेकर समझौते के करीब पहुंचने से नाराज हैं। इस बीच ब्रिटेन की समुद्री निगरानी एजेंसी के अनुसार हॉर्मुज जलडमरू मध्य से बाहर निकल रहे एक जहाज पर मिसाइल से हमला हुआ। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani. The news read by Ashish P. Abraham. BRICS nations has reiterated their commitment to strengthening collaboration on environmental protection and sustainable development. A joint ministerial statement adopted on the conclusion of 12th BRICS Environment Ministers' meeting in New Delhi yesterday said BRICS nations also reaffirmed their commitment to advancing the full and effective implementation of the 2030 Agenda for Sustainable Development, the United Nations Framework Convention on Climate Change and its Paris Agreement. The countries emphasized that enhanced international cooperation, including availability of finance from developed countries, is essential to enable developing countries to effectively address environmental and climate challenges. India is chairing BRICS this year with the theme Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability. The BRICS ministers also expressed their appreciation for India's leadership in advancing the circular economy as an enabler of sustainable development. Union Home Minister Amit Shah will be on a 2-day visit to Chennai. He will be attending the South India Chief Ministers' Conference at a private resort at Kovalam near Chennai. The Home Minister is scheduled to arrive there today. He will proceed to the venue straight away from the airport. He will address the Chief Ministers' Conference on Thursday and will be leaving to New Delhi on Thursday evening. Chief Ministers of Tamil Nadu, Kerala, Andhra Pradesh, Telangana and Puducherry will attend the conference. The anti-corruption branch of Delhi government has arrested former minister and ARP leader Satyendra Kumar Jain, IAS officer and former CEO of Delhi Jal Board Udit Prakash Rai, and 4 other accused persons in connection with irregularities and criminal conspiracy in the tendering process relating to augmentation and upgradation.

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर रात सुरमई की ये खूबसूरत महफिल और आपके साथ हूं मैं जयती। सभी सुनने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। रात सुरमई में जो पहला गीत आप सुनेंगे फिल्म का नाम है सावन को आने दो और आवाज है यशुदास की। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

और अब जो गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है लोफर और आवाज है मोहम्मद रफी की। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

आप सुन रहे हैं रात सुरमई। एक बड़ी सुंदर सी बात है जीवन से जुड़ी हुई कि जीवन हर मोड़ पर उत्तर नहीं देता, वह पहले जीवन से जुड़े हुए प्रश्नों के साथ में जीना सिखाता है। अधूरेपन से अगर मन विचलित होने लगे तो पूर्णता का मूल वो कभी नहीं समझ पाएगा। पूर्णता के मूल को समझने के लिए हमें अधूरेपन के साथ भी जीना सीखना होगा। हर असमंजस के भीतर एक नई दृष्टि का द्वार खोल देता है ये जीवन। यदि हम उससे भागेंगे नहीं, तब एक दिन जब पीछे मुड़कर देखेंगे तो पता चलेगा कि कठिनाइयों ने रास्ता नहीं रोका था, वे बस हमें हमारे पहचान तक पहुंचाने में हमारी मदद कर रही थी। और इंसान का सबसे सच्चा उत्तर उसे बाहर कहीं नहीं मिलता, हर प्रश्न का जवाब हमें खुद के साथ खुद के अंदर ही मिलता है। तो है ना खूबसूरत सी बात। आप सुन रहे हैं रात सुरमई। अगला गीत लता मंगेशकर की आवाज में और फिल्म का नाम है अर्पण।

0: बात नहीं कर रही मुझसे नाराज हो क्या मुझसे कोई गलती हो गई क्या
1: नहीं
0: तो फिर गुमसुम क्यों हो क्या बात है
1: एक तो परदेस जा रहे हो कहते हो एक साल क्या है देखते देखते निकल जाएगा
0: धत तेरे की बस इतनी सी बात है
1: छोड़ो
0: देखो शोभा यू नाराज मत हो मैं तुम्हें रोज खत लिखा करूंगा और हर हफ्ते टेलीफोन भी करूंगा सच पूछो शोभा अगर तुम और तुम्हारा प्यार मेरी जिंदगी में न होते तो मैं परदेश नहीं जा पाता अब तो मुस्कुरा दो
1: उफ़ ये सूट और टाई मेरी पसंद के हैं जब भी किसी पार्टी में जाना इसे पहन के जाना इसमें तुम बहुत हैंडसम लगते हो
0: अच्छा मान लो बहुत हैंडसम देखकर वहां की कोई लड़की फिदा हो गई तो
1: मैं समझूंगी वो लड़की मुझसे भी ज्यादा समझदार और अकलमंद है
0: जलन नहीं होगी
1: बिल्कुल नहीं अगर तुमने उसे शादी भी कर ली तो भी मैं अपनी जिंदगी की आखिरी सांस तक तुम्हें चाहती रहूंगी
0: शोभा

ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और रात सुरमई में आपके साथ हूं मैं जयती। और अब जो गीत आप सुनने जाएंगे आप सुनेंगे, इस फिल्म का नाम है तुम्हारे लिए और आवाज है लता मंगेशकर की। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

आप सुन रहे हैं रात सुरमई। दिन ढल जाता है और शाम आती है। शाम जब आती है तो कुछ अच्छी बातें भी अपने साथ लेके आती है। शाम कहती है कि जैसे दिन ढल जाता है वैसे ही जीवन में अगर दुख है तो दुख भी ढल जाएगा। हर परेशानी की भी एक शाम होती है और उसके बाद आती है उम्मीदों की सुबह। और जब हम अपने डर अपनी चिंता इस शाम के हवाले कर देते हैं तो फिर जैसे शाम ढल जाती है वैसे ही दुखों की भी शाम ढल ही जाती है। शाम कहती है कि जो उम्मीदों की सुबह होती है उसके लिए बड़े धैर्य से रात के प्रहर में गुजरना पड़ता है। यानी सुख और दुख के बीच का जो पहर होता है ना, वो थोड़ी बेचैनी, थोड़ी घबराहट और मन को बार बार बेचैन करने वाली वो रात होती है, वो पहर होता है। पर जब हम उस वक्त में ठहरना सीख लेते हैं, थमना सीख लेते हैं, तो वो वक्त भी गुजर जाता है, है ना? अच्छी सी बात। और अब जो गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है सौदागर, आवाज है कविता कृष्णमूर्ति, मनहर और सुखविंदर की। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

और वक्त आ चला है आप सभी से विदा लेने का। तो चलते चलते हम आपको याद दिला दें कि अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 3 बजे आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार, और 3:10 पर मीना होंगी आपके साथ। फिलहाल छोड़े जाते हैं एक वादे के साथ, यानी फिर मिलने के वादे के साथ, और एक प्यारे से गीत के साथ। फिल्म का नाम है अर्पण, आवाज है लता मंगेशकर की। तो आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। नमस्कार।

0: देखिए, हमारा फाइव स्टार होटल है। यहाँ पर हमेशा कैबरे के प्रोग्राम ही पसंद किए जाते हैं। सिर्फ एक बार हमने कव्वाली का प्रोग्राम रखा था
1: ये,
0: जो गेस्ट ने बिल्कुल पसंद नहीं किया।
2: मैनेजर साहब, मैं फख्र के साथ कह सकता हूँ, आज तक हमारा एक प्रोग्राम नहीं हुआ जिसे देखकर देखने वाले खुद उठकर

0: हमारे साथ नाचने नहीं लगे। हमारी पार्टी पंजाब की सबसे मशहूर पार्टी है।
1: नाम तो मैंने भी सुना है।
2: तो एक बार काम भी देख लीजिए ना। गुड मॉर्निंग मैनेजर साहब।
1: गुड मॉर्निंग।
2: गुड मॉर्निंग।
0: गुड मॉर्निंग। ये मेरी बेटी है सोना।
1: ओह आई सी।
0: हमारे ट्रुप के हर तरह के प्रोग्राम को यही लीड करती है।
1: ओह प्लीज सिट डाउन मिस सोना।
2: शुक्रिया।
1: चाय?
2: जी नहीं शुक्रिया, मैं चाय नहीं पीती। मैनेजर साहब एक प्रोग्राम करने का मौका दीजिए, उसके बाद देखिए आप हमें पूरा सीजन नहीं जाने देंगे, ठीक है ना बाबा?
1: ओके धन्यवाद।
2: थैंक यू वेरी मच।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। भारत ने इस बात पर जोर दिया है कि पर्यावरण से जुड़े प्रयास लोगों पर केंद्रित, टिकाऊ और विकासशील देशों की वास्तविकताओं के अनुरूप होने चाहिए। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कल नई दिल्ली में ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक में कहा कि ब्रिक्स की अध्यक्षता के दौरान भारत का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन से प्रेरित है। इसमें ग्लोबल साउथ की चिंताओं को एजेंडे में सबसे ऊपर रखा गया है और ब्रिक्स को सहयोग तथा स्थिरता के लिए समायोजन तथा नवाचार को बढ़ावा देने वाले मंच के तौर पर फिर से परिभाषित किया गया है। श्री भूपेंद्र यादव ने जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता के नुकसान, प्रदूषण और आपदा के खतरों जैसी बढ़ती वैश्विक पर्यावरणीय चुनौतियों पर प्रकाश डाला। भारत ने इंडोनेशिया में आए भीषण भूकंप से हुई जानमाल की हानि पर गहरा शोक व्यक्त किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि भारत इस त्रासदी से बेहद दुखी है और भारत इंडोनेशिया को राहत और बचाव कार्यों में हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। बांग्लादेश से ऊर्जा संबंधी अनुरोध प्राप्त होने की खबरों पर श्री जायसवाल ने कहा कि भारत का बांग्लादेश के साथ ऊर्जा सहयोग जारी है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में हो रहे विरोध प्रदर्शनों पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि इस क्षेत्र में स्थानीय आबादी को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से सहानुभूति और एकजुटता की जरूरत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत के चुनाव प्रणाली की प्रशंसा करने और अमरीकी चुनावों में मतदाता पहचान पत्रों की कमी पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की टिप्पणी का जिक्र करने पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि भारत की चुनाव प्रणाली की विश्वसनीयता सर्वविदित तथ्य है। इस बीच निर्वाचन आयोग ने कल देश की चुनाव व्यवस्था पर एक तथ्य पत्र जारी किया है। आयोग ने बताया कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं व विधान परिषदों के चुनाव स्वतंत्र संवैधानिक संस्था भारत निर्वाचन आयोग की देखरेख में होते हैं। मतदान फोटो पहचान पत्र के आधार पर कराया जाता है। करीब 1 अरब मतदाताओं को मतदाता पहचान पत्र जारी किए जा चुके हैं। ये तथ्य पत्र अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भारत की चुनाव प्रक्रिया

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल, जिसे आप सुन रहे हैं एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। समय हो चुका है 3:11 और 7 सेकंड। हमराही कार्यक्रम में आज मैं हूं आपके साथ मीना चौहान। कीजिए स्वीकार मेरा प्यार भरा नमस्कार।

दोस्तों जानते हैं कुछ रिश्ते जिंदगी से दूर होकर भी दिल से दूर नहीं होते। समय कितना भी बदल जाए कुछ यादें हमेशा हमारे साथ रहती है। इसी तरह का आइए सुनते हैं अगले गीत में।

जिंदगी के सफर में बहुत से लोग मिलते हैं, लेकिन कोई एक ऐसा भी होता है जिसकी मौजूदगी पूरी दुनिया को खूबसूरत बना देती है। ऐसी मोहब्बत हर किसी के हिस्से में नहीं आती, और जब आती है तो जिंदगी यादगार हो जाती है, बिल्कुल इस गीत की तरह।

दोस्तों, रात की खामोशी में कुछ यादें और भी गहरी हो जाती हैं। दिन भर हम खुद को कितना भी व्यस्त रखें, लेकिन रात होते ही किसी अपने की याद चुपके से दिल के दरवाजे पर दस्तक दे देती है। कुछ लोग दूर होकर भी दिल के बहुत करीब रहते हैं और उनकी याद आए तो बस यही शब्द दिल से निकलते हैं।

दोस्तों, किसी को अपने दिल में जगह देना आसान नहीं होता, लेकिन जब कोई खास शख्स दिल में बस जाए ना, तो उसकी मौजूदगी हर पल महसूस होती है। रात की शांत फिजा में जब दिल सबसे करीब होता है, आइए याद करें उस खूबसूरत एहसास को जब किसी को दिल में बैठाकर सारी दुनिया ही हसीन लगने लगती है।

0: कैसे चुने सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
1: आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल, जिसे आप सुन रहे हैं FM 100.1 MHz पर। समय हो चुका है 3:38 और 37 सेकंड। हमराही कार्यक्रम में आज मैं हूं आपके साथ मीना चौहान।

दोस्तों, सावन की फुहारों में एक अलग ही मिठास होती है। रात की खामोशी, बाहर बरसती बूंदे और दिल में उठती किसी अपने की याद। लगता है जैसे मौसम भी चुपके चुपके दिल की बात कह रहा हो। कभी बारिश की बूंदे सिर्फ पानी नहीं होती, वो कुछ भूली बिसरी यादों को भी साथ ले आती है। आइए सुनते हैं इसी एहसास को इस गीत में।

दोस्तों सावन की फुहारे जब दिल को छूती है ना, तो किसी खास की याद आना स्वाभाविक है। इसी मीठे इंतजार और प्यार भरे एहसास को सुनते हैं इस गीत में।

श्रोताओं, इस गीत के साथ ही मीना चौहान को दीजिए इजाजत। नमस्कार, 4:10 पर आपके साथ रहूंगी कार्यक्रम अरुणिमा में। थोड़ी देर में आप सुनेंगे

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। भारत ने इस बात पर जोर दिया है कि पर्यावरण से जुड़े प्रयास लोगों पर केंद्रित, टिकाऊ और विकासशील देशों की वास्तविकताओं के अनुरूप होने चाहिए। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कल नई दिल्ली में ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक में कहा कि ब्रिक्स की अध्यक्षता के दौरान भारत का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन से प्रेरित है। इसमें ग्लोबल साउथ की चिंताओं को एजेंडे में सबसे ऊपर रखा गया है और ब्रिक्स को सहयोग तथा स्थिरता के लिए समायोजन तथा नवाचार को बढ़ावा देने वाले मंच के तौर पर फिर से परिभाषित किया गया है। श्री भूपेंद्र यादव ने जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता के नुकसान, प्रदूषण और आपदा के खतरों जैसी बढ़ती वैश्विक पर्यावरणीय चुनौतियों पर प्रकाश डाला। भारत ने इंडोनेशिया में आए भीषण भूकंप से हुई जानमाल की हानि पर गहरा शोक व्यक्त किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि भारत इस त्रासदी से बेहद दुखी है और भारत इंडोनेशिया को राहत और बचाव कार्यों में हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में हो रहे विरोध प्रदर्शनों पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि इस क्षेत्र में स्थानीय आबादी को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से सहानुभूति और एकजुटता की जरूरत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत के चुनाव प्रणाली की प्रशंसा करने और अमेरिकी चुनावों में मतदाता पहचान पत्रों की कमी पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की टिप्पणी का जिक्र करने पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि भारत की

0: चुनाव प्रणाली की विश्वसनीयता सर्वविदित तथ्य है। इस बीच निर्वाचन आयोग ने कल देश की चुनाव व्यवस्था पर एक तथ्य पत्र जारी किया। आयोग ने बताया कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं व विधान परिषदों के चुनाव स्वतंत्र संवैधानिक संस्था भारत निर्वाचन आयोग की देखरेख में होते हैं। मतदान फोटो पहचान पत्र के आधार पर कराया जाता है। करीब 1 अरब मतदाताओं को मतदाता पहचान पत्र जारी किए जा चुके हैं। ये तथ्य पत्र अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भारत की चुनाव प्रक्रिया पर टिप्पणी के बाद जारी किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक 2 अक्टूबर से 1 महीने का अभियान बैंकिंग फॉर यूथ शुरू करेंगे। कल शाम नई दिल्ली में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक सम्मेलन के समापन भाषण में उन्होंने कहा है कि इस अभियान का प्राथमिक उद्देश्य युवाओं को वित्तीय क्षेत्र से जोड़ना और उनकी वित्तीय यात्रा में मार्गदर्शन करना होगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने परीक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया है। एजेंसी ने करीब 600 विशेषज्ञों को हटाकर नए विशेषज्ञों को शामिल करने का फैसला किया है। शिक्षा मंत्रालय के अनुसार प्रश्न पत्रों की जांच के लिए 4 स्तर की व्यवस्था लागू की जाएगी। ये फैसला केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी के निर्देश पर लिया गया है। गृह मंत्री अमित शाह दक्षिण भारतीय मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन भाग लेने के लिए आज से 2 दिवसीय दौरे पर चेन्नई जाएंगे। श्री शाह कल मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इस सम्मेलन में तमिलनाडु, केरलम, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और पुदुचेरी के मुख्यमंत्री भाग लेंगे। इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भारत की GDP वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर 6.8% कर दिया है। मई में यह अनुमान 6.7% था। हालांकि रेटिंग एजेंसी ने कहा है कि अल नीनो मौसम और भू राजनीतिक चुनौतियां आर्थिक वृद्धि की रफ्तार को प्रभावित कर सकती हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ओमान को बमबारी की धमकी दी है। 2 क्षेत्रीय अधिकारियों के अनुसार राष्ट्रपति ट्रंप ओमान के ईरान के साथ हॉर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों की आवाजाही को लेकर समझौते के करीब पहुंचने से नाराज हैं। हॉकी में भारतीय पुरुष टीम आज नीदरलैंड्स के एम्स्टेलवीन में FIH पुरुष हॉकी विश्व कप के पूल डी मुकाबले में पाकिस्तान का सामना करेगी। अगले दौर में जगह बनाने के लिए दोनों टीमों के लिए यह मुकाबला अहम है। क्रिकेट में भारत और श्रीलंका के बीच गोल में पहले टेस्ट मैच में आज श्रीलंका अपनी दूसरी पारी में 84 रन पर 4 विकेट से आगे खेलेगा। भारत जीत से 6 विकेट दूर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Ashish Abraham. BRICS nations has reiterated their commitment to strengthening collaboration on environmental protection and sustainable development. A joint ministerial statement adopted on the conclusion of 12th BRICS Environment Ministers' meeting in New Delhi yesterday said, BRICS nations also reaffirmed their commitment to advancing the full and effective implementation of the 2030 Agenda for Sustainable Development, the United Nations Framework Convention on Climate Change, and its Paris Agreement. The countries emphasized that enhanced international cooperation, including availability of finance from developed countries, is essential to enable developing countries to effectively address environmental and climate challenges. India is sharing BRICS this year with the theme Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability. The BRICS ministers also expressed their appreciation for India's leadership in advancing the circular economy as an enabler of sustainable development. Union Home Minister Amit Shah will be on a 2-day visit to Chennai. He will be attending the South India Chief Ministers' Conference at a private resort at Kovalam near Chennai. The Home Minister is scheduled to arrive there today. He will address the Chief Ministers' Conference on Thursday. Chief Ministers of Tamil Nadu, Kerala, Andhra Pradesh, Telangana and Puducherry will attend the conference. The Anti-Corruption Branch ACB of Delhi government has arrested former minister and AAP leader Satyendra Kumar Jain, IAS officer and former Delhi and former CEO of Delhi Jal Board, Udit Prakash Roy, and four other accused persons in connection with irregularities and criminal conspiracy in the

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल, जिसे आप सुन रहे हैं एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। समय हो चुका है 4:11 और 5 सेकंड। अरुणिमा कार्यक्रम में आज मैं हूं आपके साथ मीना चौहान। कीजिए स्वीकार मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, कभी कभी जिंदगी हमें दूसरा मौका देती है कुछ नया करने का, खुद को फिर से पहचानने का। उम्र कोई भी हो, नई शुरुआत के लिए कोई तारीख तय नहीं होती। जब दिल कहे कि फिर से जीना है तो कदम आगे बढ़ाइए।

दोस्तों कुछ गीत सिर्फ सुना ही नहीं देते बल्कि चेहरे पर मुस्कान भी ले आते हैं। किसी की अदा, किसी की चाल और उस पर दिल का यूं बेवजह खुश हो जाना, यही तो पुराने गीतों की खूबसूरती है। जिंदगी में

दोस्तों, कभी कभी जिंदगी में कोई ऐसा इंसान मिल जाता है जो हमारी सोच पर पूरी तरह छा जाता है। फिर दिन हो या रात, काम हो या आराम, ख्याल बार बार उसी शख्स के पास जाता है। शायद मोहब्बत का असर ही कुछ ऐसा होता है। दिल में कोई बस जाए तो फिर कुछ और याद कहाँ रहता है।

0: कैसे चुने सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
1: आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल, जिसे आप सुन रहे हैं FM 100.1 MHz पर। समय हो चुका है 4:29 और 20 सेकंड। कार्यक्रम चल रहा है अरुणिमा और मैं हूं आपके साथ मीना चौहान।

दोस्तों, सुहाने सफर में कुछ ऐसे गीत होते हैं जो अपने साथ मुस्कुराहट और थोड़ी सी शरारत भी लेकर आते हैं। किसी की मीठी बोली, किसी की प्यारी सी अदा और किसी को देखते ही दिल का खिल उठना, मोहब्बत की शुरुआत अक्सर ऐसे ही मासूम एहसासों से होती है। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

सुबह की इस खूबसूरत बेला में एक नई शुरुआत का एहसास अपने मन में उतर आता है। जिंदगी में कुछ चीजों के लिए इंतजार करना पड़ता है, जैसे कली को फूल बनने में वक्त लगता है, लेकिन उस इंतजार में भी एक खूबसूरत उम्मीद छुपी होती है। इसलिए आज की सुबह खुद पर भरोसा रखिए, अपने सपनों को थोड़ा वक्त दीजिए और मुस्कुराते हुए आगे बढ़ते रहिए।

सुबह की खूबसूरत शुरुआत अगर किसी प्यारी मुलाकात की याद के साथ हो तो पूरा दिन जैसे मुस्कुराने लगता है। जिंदगी में कुछ मुलाकातें महज संयोग नहीं होती, वे हमारे सफर में एक खूबसूरत याद बनकर आती है। रिश्तों को संभाल कर रखिए, क्योंकि किसी अपने का साथ जिंदगी की मुश्किलें आसान कर देता है। आइए सुनते हैं इसी एहसास को इस गीत में।

सुबह की ताजा हवा में जब फूलों की खुशबू घुलती है ना, तो मन अपने आप किसी खास की याद से भर जाता है। फूल सिर्फ खूबसूरती नहीं बल्कि प्यार और अपनापन भी लेकर आते हैं, और जब कोई फूलों के साथ अपने दिल की बात भेजे तो उस संदेश की खुशबू बहुत दूर तक जाती है। तो चलिए सुनते हैं एक ऐसा ही गीत।

दोस्तों, सुबह का वक्त हमें एक खूबसूरत बात सिखाता है। सही संगत और अच्छे रिश्ते जिंदगी के मुश्किल पलों को भी आसान बना देते हैं। किसी अपने के साथ बिताए हुए कुछ पल कभी कभी पूरे दिन की थकान मिटा देते हैं। इसलिए जिंदगी की भागदौड़ में उन लोगों के लिए वक्त जरूर निकालिए जिनके साथ रहकर दिल को सुकून मिलता है। आइए इसी मीठे एहसास को सुनते हैं इस गीत में।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। भारत ने पर्यावरण से जुड़े प्रयासों को जन केंद्रित, टिकाऊ और विकासशील देशों की वास्तविकताओं के अनुरूप होने पर बल दिया है। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कल नई दिल्ली में ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक में ये बात कही। श्री यादव ने कहा कि ब्रिक्स की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना के अनुरूप विकासशील देशों की चिंताओं को एजेंडे में सबसे ऊपर रखा गया है। श्री यादव ने जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता के नुकसान, प्रदूषण और आपदा के खतरों की चुनौतियों का उल्लेख किया।
1: The impact of climate change,
2: जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता का नुकसान और प्रदूषण, ये तीनों मिलकर एक बड़ा संकट पैदा कर रहे हैं। आपदाओं का बढ़ता खतरा भी दुनिया भर में पारिस्थितिकी तंत्रों को प्रभावित कर रहा है। ये चुनौतियाँ विकासशील देशों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि वे पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता, गरीबी उन्मूलन, खाद्य सुरक्षा और समावेशी विकास जैसी व्यापक विकास प्राथमिकताओं से जुड़ी होती हैं।
1: फूड सिक्योरिटी एंड इंक्लूसिव ग्रोथ।
0: भारत ने इंडोनेशिया में आए भीषण भूकंप से हुई जानमाल की हानि पर गहरा शोक व्यक्त किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में कल कहा कि भारत इंडोनेशिया को राहत और बचाव कार्यों में हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शनों पर प्रवक्ता ने कहा कि इस क्षेत्र में स्थानीय लोगों को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से सहानुभूति और एकजुटता की आवश्यकता है। निर्वाचन आयोग ने कल देश की चुनाव व्यवस्था पर एक तथ्य पत्र जारी किया है। आयोग ने बताया कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं तथा विधान परिषदों के चुनाव स्वतंत्र संवैधानिक संस्था निर्वाचन आयोग की देखरेख में होते हैं और मतदान फोटो पहचान पत्र के आधार पर कराया जाता है। आयोग ने कहा कि करीब 1 अरब मतदाताओं को मतदाता पहचान पत्र जारी किए जा चुके हैं। ये तथ्य पत्र अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भारत की निर्वाचन प्रक्रिया पर टिप्पणी के बाद जारी किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक 2 अक्टूबर से 1 महीने का अभियान युवाओं के लिए बैंकिंग शुरू करेंगे। नई दिल्ली में कल सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक सम्मेलन के समापन भाषण में उन्होंने कहा कि इस अभियान का प्राथमिक उद्देश्य युवाओं को वित्तीय क्षेत्र से जोड़ना और उनकी वित्तीय यात्रा में मार्गदर्शन करना है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने परीक्षा व्यवस्था में

बड़ा बदलाव किया है। एजेंसी ने करीब 600 विशेषज्ञों को हटाकर नए विशेषज्ञों को शामिल करने का फैसला किया है। शिक्षा मंत्रालय के अनुसार प्रश्न पत्रों की जांच के लिए 4 स्तर की व्यवस्था लागू की जाएगी। इसके अलावा एजेंसी ने नए कार्यालय में CISF की तैनाती के साथ सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की जाएगी। ये फैसला केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी के निर्देश पर लिया गया। गृह मंत्री अमित शाह दक्षिण भारतीय मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज से 2 दिन के चेन्नई दौरे पर हैं। श्री शाह कल मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इस सम्मेलन में तमिलनाडु, केरलम, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और पुदुचेरी के मुख्यमंत्री भाग लेंगे। इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भारत की GDP वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर 6.8% कर दिया है। मई में यह अनुमान 6.7% था। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत जापान साझेदारी और मजबूत करने पर बल दिया है। उन्होंने जापानी कंपनियों से भारत में निवेश और कारोबारी साझेदारी बढ़ाने का आह्वान किया। नई दिल्ली में कल जापानी प्रतिनिधिमंडल को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के संबंध शांति, प्रगति और समृद्धि की साझा सोच पर आधारित हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ओमान को बमबारी की धमकी दी है। 2 क्षेत्रीय अधिकारियों के मुताबिक राष्ट्रपति ट्रंप ओमान के ईरान के साथ होर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों की आवाजाही को लेकर समझौते के करीब पहुंचने से नाराज हैं। इस बीच ब्रिटेन की समुद्री निगरानी एजेंसी के अनुसार होर्मुज जलडमरू मध्य से बाहर निकल रहे एक जहाज पर मिसाइल से हमला किया गया है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम आज नीदरलैंड्स के एम्स्टलफिन में FIH पुरुष हॉकी विश्व कप के पूल डी मुकाबले में पाकिस्तान का सामना करेगी। अगले दौर में जगह बनाने के लिए दोनों टीमों के लिए यह मुकाबला महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल, जिसे आप सुन रहे हैं एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। समय हो चुका है 5:11 और 5 सेकंड। भोर सुहानी कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ मीना चौहान। कीजिए स्वीकार मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, मुश्किलें जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन उनसे हार मान लेना जिंदगी नहीं, गिरकर संभलना और फिर आगे बढ़ना ही असली जीत है।

दोस्तों, जब दिल सच्चा होना तो दुनिया की बातें मायने नहीं रखती। लोग क्या कहेंगे ये सोचकर अपने मन की खुशी को मत रोकिए। कृष्ण के बंसी की तरह अपनी आत्मा की आवाज सुनिए और पूरे विश्वास के साथ अपनी राह पर आगे बढ़िए, क्योंकि सच्चे रिश्ते और सच्ची भावनाएं किसी सफाई की मोहताज नहीं होती।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल, जिसे आप सुन रहे हैं FM 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। समय हो चुका है 5:20 और कार्यक्रम चल रहा है भोर सुहानी। मैं हूं आपके साथ मीना चौहान। दोस्तों, जिंदगी हमेशा हमारी उम्मीदों के मुताबिक नहीं चलती है, लेकिन समझदारी इसी में है कि हर परिस्थिति के साथ कदम मिलाकर चलते रहें। जो बीत गया उसे मुस्कुराकर जाने दीजिए और जो सामने है उसे पूरे दिल से अपनाइए, क्योंकि जिंदगी को बदलना हमेशा हमारे हाथ में नहीं, लेकिन उसे जीने का अंदाज, उसके जीने का अंदाज हमेशा हमारे हाथ में होता है।

हवाओं की तरह जिंदगी भी कभी शांत, कभी तेज और कभी अनजानी दिशा में बहती है। हमें बस इतना करना है कि हर बदलती हवा के साथ खुद को संभालते हुए आगे बढ़ना है, क्योंकि बदलाव से घबराना नहीं, उसे अपनाकर आगे बढ़ना ही जिंदगी की खूबसूरती है।

दोस्ती वो रिश्ता है जिसका कोई मतलब नहीं होता, यानी कि वो अनकंडीशनल लव होता है, उसमें अपनापन होता है। अच्छे दोस्त हमारी खुशियों में मुस्कुराते हैं और मुश्किल वक्त में बिना कहे हमारे साथ खड़े हो जाते हैं। जिंदगी में ऐसे रिश्तों की हमेशा कद्र करनी चाहिए, क्योंकि सच्ची दोस्ती वक्त के साथ पुरानी नहीं होती, बल्कि हर गुजरते पल के साथ और गहरी होती जाती है।